दूर हुई। किशोरदा का जो तरीका था वो हमेशा से अनकन्वेंशनल सा रहा है। वो फॉर्मल टीचिंग कम देते थे बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर पर ज़्यादा ध्यान देते थे और उसी पर विश्वास भी करते थे। कई इंटरव्यूज़ में खुद अमित जी ने कहा है कि उनके जो फादर थे, उनके जो पिता थे, वो उन्हें सिर्फ गाना नहीं सिखाते थे बल्कि उन्होंने सिखाया कि आवाज़ में भाव कैसे डालते हैं। और यही वजह है कि अमित कुमार जी की जो गायकी, जब भी आप उनके गाने सुनते हैं तो एक नेचुरल वॉर्म्थ मिलती है उसमें, जिसमें कोई बनावट नहीं है, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, है ना, लगता है ना जब भी, तो बड़ी सी प्योर सी, प्योर हार्टेड वाली वॉइस लगती है अमित जी की, और बिल्कुल सच्ची वाली वॉइस लगती है। तो बहुत सारी बातें अभी भी हैं अमित जी के बारे में, बहुत सारी जानकारियां हैं अमित जी के बारे में जो हम आज बात करेंगे यहाँ पर। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप, मेरे यानी कि प्रियदर्शनी के साथ में बने रहिए, सुनते रहिए। और अभी कैद फिल्म से ये गाना जिसमें अमित जी के साथ में अंजलि राम, सुनते हैं दोनों की आवाज़ें। गीत मेरे मीत प्रोग्राम चल रहा है।

0: शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जीडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: मेरा चैन वैन सब उजड़ा।
3: Hi, this is Abhishek Bachchan.
4: Hi, this is Aishwarya.
5: मैं हूँ अमिताभ बच्चन.
6: Hi, I'm रानी मुखर्जी and you're listening
7: Radio Pink City.
8: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
9: रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, गीत मेरे मीत प्रोग्राम चल रहा है और इसमें आज हम बात कर रहे हैं अमित कुमार जी की। बने रहिए, सुनते रहिए गीत मेरे मीत।

0: कुछ अलग एहसास होता है उन छोटी छोटी बातों का जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, जैसे मम्मी की प्यार भरी डांट।
1: राहुल, अरे देखो तुम्हारे हाथ गंदे हैं, राहुल धो के खाना खाओ।
0: पापा का कहना,
2: बेटा आई लव यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू।
0: बहन का नाना करते हुए भी फाइनली अपनी वो स्पेशल वाली चॉकलेट शेयर कर लेना।
3: क्या यार, इमोशनल अत्याचार मत करो, लो रे खाओ, ठूसो।
0: भाई का गुस्से से देखना मगर फिर बाइक की चाबी पकड़ा देना।
4: अब मुंह मत बना, ये ले बाइक की चाबी, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: दोस्त का कंधा और सीक्रेट्स रखने का वादा।
5: एक बात बताओ यार, किसी से कहेगी तो नहीं ना? पक्का पक्का ना?
0: यानी जिंदगी हसीन है जब अपने संग है। ऐसा ही एक साथी 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी।
6: कुछ तो खास है।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: Stay tuned to 100.3 FM Radio Pink City.
3: 10:55 प्रियदर्शनी आपके साथ, मैं बने रहिए, सुनते रहिए। प्रोग्राम चल रहा है गीत मेरे मीत, जिसमें आज अमित कुमार साहब की बातें कर रहे हैं हम, क्योंकि उनका है हैप्पी वाला बर्थडे आज। अमित कुमार साहब जो अपने आप में लीजेंड रहे हैं गायकी, जिनकी रग रग में बसी है, विरासत में मिली है, और जिन्होंने 11 साल की उम्र में पहला गाना गाया था। इनकी भी एक कहानी इंटरेस्टिंग है। वो बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सवों में गाया करते थे, तो एक कार्यक्रम में जब वो गाना गा रहे थे तो बंगाली अभिनेता जो थे उत्तम कुमार साहब, उन्होंने उनकी प्रतिभा को देखा, सराहा। लेकिन वहीं उनकी जो माँ थी, उन्होंने शिकायत की किशोरदा को कि अमित जो हैं वो केवल फिल्मी गाने गाते हैं। तो किशोरदा को लगा कि अच्छा ऐसा है, तो वो उन्हें मुंबई ले आए। और मुंबई आने से पहले ही आपको पता है कि अमित साहब ने सिर्फ गाने ही नहीं गाए हैं बल्कि फिल्मों में अभिनय भी किया है। जी हाँ, दूर गगन की छाँव में जो 1964 में आई थी, वहीं दूर का राही जो 1971 में आई थी, इन दोनों ही फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गीत गाया, और जो पहला गीत था वो मैं पंछी मतवाला रे, ये वाला गाना रिकॉर्ड किया था। अब अगर आ जाएं कि जब रिकॉर्डिंग हो गई और वो आगे बढ़ गए और 80 का दशक आ गया और उनकी आवाज़ एक रोमांटिक आवाज़ बन गई, हर एक्टर के परफेक्ट वॉइस बन गई थी उनकी आवाज़। 80 के अंत और 90 की शुरुआत की बात करें तो अमित साहब का जो करियर था वो एक गोल्डन फेज माना जाता है। ये वो दौर था जब उनकी आवाज़ युवा धड़कन बन चुकी थी, युवाओं की धड़कन बन चुकी थी, चाहे रोमांस की बात हो, फन की बात हो, इमोशन की बात हो, यानी अमित जो हैं वो हर रंग में फिट बैठते थे। जैसा कि अभी आपने कई गाने सुने है ना, अपना सपना मनी मनी का भी आपने जो वो गाना है वो आपने सुना, दिल में बजी गिटार, मतलब वर्सेटाइल सिंगर माने गए हमेशा से अमित साहब। ओवर सिंगिंग नहीं करते थे, उनकी जो गायकी थी वो एफर्टलेस लगती थी, और शायद यही वजह थी कि रोमांटिक ड्यूट्स इतने मेमोरेबल बने उनके। 500 से भी ज़्यादा उन्होंने गाने गाए हैं, अलग अलग भाषाओं में गाने गाए हैं, हिंदी में भी उन्होंने तकरीबन 250 से ज़्यादा गाने गाए हैं। ऐसे बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। बागी का गाना जो अभी मैं आपको सुनाऊंगी, वो अलग ही फ्रेशनेस है उसमें। जीवा का जो गाना है रोज़ रोज़ आँखों तले, उसमें इमोशंस हैं, सॉफ्टनेस है, यानी परफेक्ट बैलेंस्ड है। बहुत कुछ है जो आपको किशोरदा की आवाज़ की याद दिलाता है। लेकिन अमित जी ने हमेशा एक मैच्योर फैसला अपने पास में रखा। उन्होंने कभी अपने पिता जैसे बनने की कोशिश नहीं की, अपनी सिंगिंग को एक अलग ही मुकाम दिया, एक अलग ही पर्सनालिटी के रूप में ईजाद किया, और कभी छाया बनने की कोशिश नहीं की किशोरदा ने भी उनकी। और इसी तरह से शायद अमित जी आज एक अलग पहचान रखते हैं। और अभी अमित जी की आवाज़ का ये वाला गाना सुन लेते हैं जो कि है फिल्म बागी का। कैसा लगता है आप खुद समझ जाएंगे जो अभी हम इतनी देर से इनके गाने सुन रहे हैं ना। थोड़ी देर में लेकर आऊँगी मैं रह खुजर, और अभी 10:58 शुक्रवार का ये दिन है, एंजॉय करिए। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

0: पतझर सावन बसंत बहार।
1: मौसम आते मौसम जाते, कभी खुशी कभी गम है लाते, पर कौन है जिसे आप हमेशा अपने पास है पाते। आपका अपना रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। फ्री स्टाइल कुश्ती की तरह फ्राइडे आता है, कई बार तो वीकेंड की प्लानिंग में ही निकल जाता है, और रेडियो पिंक सिटी न्यू रिलीज्ड मूवी की तरह मिलता है। हर पल आपकी म्यूजिक का टेस्ट बदलता है। बच्चन के बोल बच्चन से रजनी के स्टाइल तक, शाहरुख की एक्टिंग से आमिर की स्माइल तक, ट्यून करो रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
2: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। 11:06 हो चुके हैं, और 11 बजे का जो वक्त होता है ना, बड़ा ही दिलचस्प सा होता है। सुबह की भाग दौड़ अब थोड़ी थम चुकी होती है, और दिन अभी पूरी तरह जवान हुआ होता है। ऐसे ही वक्त में कुछ अल्फाज, कुछ शेर और कुछ गज़लें दिल के बेहद करीब लगने लगती हैं। आज की जो शुरुआत है, यानी कि 11 बजे के इस आर की शुरुआत है, इस घंटे की शुरुआत है, वो एक बेहद खूबसूरत शेर से करती हूँ। कुछ ही गौर फरमाइएगा। तुम्हें देखा तो लगा यूं कि बाहर आ गई, तुम्हें देखा तो लगा यूं कि बाहर आ गई, जैसे वीराने में चुपके से फुहार आ गई। कुछ लोग हैं तो सच में ना मौसम बदल देते हैं, उनके आने से आवाज़ भी नरम हो जाती है और दिल भी। तो आपकी लाइफ में कौन ऐसा है जिसके आने से आपके दिल का मौसम बदल जाता है, मौसम हाल कुछ और हो जाता है? बताइएगा ना मुझे, मेरे फेसबुक पे जाके जाइए ना थोड़ा सा, और बताइए कि कौन है, क्या खासियत है उसकी जो आपके हाल को बदल देता है, आपके मिजाज को बदल देता है। पेज है रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, वहाँ जाइए, बताइए मुझे कैसा लगता है आपको। रेडियो पिंक सिटी सुन रहे हैं आप, और यहाँ पर ये पहली गज़ल जो आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। 11:07 हो गए, रह गुज़र प्रोग्राम शुरू हो चुका है। रह गुज़र, जिसमें एक ऐसा सफ़र जिसमें बातें होती हैं एहसासों की, जिसमें बातें होती हैं आपके और हमारे जज्बातों के। बने रहिए, सुनते रहिए रह गुजर। 11:07 और 49 सेकेंड।

0: कुछ अलग एहसास होता है उन छोटी छोटी बातों का जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, जैसे मम्मी की प्यार भरी डांट।
1: राहुल, अरे देखो तुम्हारे हाथ गंदे हैं, राहुल धो के खाना खाओ।
0: पापा का कहना,
2: बेटा आई लव यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू।
0: बहन का नाना करते हुए भी फाइनली अपनी वो स्पेशल वाली चॉकलेट शेयर कर लेना।
3: क्या यार, इमोशनल अत्याचार मत करो, लो रे खाओ, ठूसो।
0: भाई का गुस्से से देखना मगर फिर बाइक की चाबी पकड़ा देना।
4: अब मुंह मत बना, ये ले बाइक की चाबी, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: दोस्त का कंधा और सीक्रेट्स रखने का वादा।
5: एक बात बताओ यार, किसी से कहेगी तो नहीं ना? पक्का पक्का ना?
0: यानी जिंदगी हसीन है जब अपने संग है। ऐसा ही एक साथी 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी।
6: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के। वाह क्या बात है, फरीदा खानम जी की आवाज़ में एक अलग ही कशिश, एक अलग ही दर्द है ना, कुछ ऐसा सही दर्द जो अक्सर मोहब्बत में होता है। वैसे मोहब्बत की शुरुआत ना अक्सर शब्दों से नहीं, नज़रों से होती है। एक नज़र और पूरी कहानी शुरू। एक नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली, नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश।

और बात कर ले। ऐसा ही होता है ना, कभी कभी खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। बिना एक लफ्ज कहे दिल बहुत कुछ सुन लेता है, और नजरों का यही संवाद बड़ा अजीब सा होता है। इसमें आवाज नहीं होती मगर असर उम्र भर रहता है, और शायद इसीलिए इश्क की पहली जुबान आंखें होती हैं। आंखें जो सारी बात कर जाती हैं, आंखें जो दिल से दिल को मिला जाती हैं। रहे गुजर प्रोग्राम चल रहा है, बने रहिए, सुनते रहिए मेरे यानी कि प्रियदर्शनी के साथ में। 11:22 रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: मुझे आज भी याद है कॉलेज का वो दिन और रोहन से वो पहली मुलाकात।
1: ये पहली मुलाकात की मीठी सी बेखुदी।
0: कितना चुप चुप सा रहता था उन दिनों, लेकिन उसकी आंखें कितना कुछ बोला करती थी, मानो कुछ कहना चाह रही हूँ। और मैं भी तो खोई खोई सी रहती थी।
1: अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल।
2: इश्क में कुछ और रोमांस खोलते रोमांटिक सॉन्ग्स ओनली ऑन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: मुस्कुराहटों की मीठी खुशबू ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
1: जरा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी।
0: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है कुछ तो बात है। 11:35 प्रियदर्शनी आपके साथ है और प्रोग्राम चल रहा है रह गुजर। रह गुजर जहाँ पर बातें होती हैं हमारे एहसासों की, हमारे जज्बातों की, जहाँ पे मुस्कुराते हैं हम आप और संग मिलके। किसी की मुस्कुराहट कितनी असरदार हो सकती है ये वही जानता है जिसने किसी को दिल से चाहा हो। किसी ने क्या खूब कहा है, तुम्हारी एक मुस्कुराहट ने कमाल कर दिया, तुम्हारी एक मुस्कुराहट ने कमाल कर दिया, जो उदास था मौसम उसे भी बहाल कर दिया। सच है, किसी अपने की हंसी कभी कभी दवा बन जाती है। मन भारी हो, दिल थोड़ा सा उलझा हुआ हो, लगे कि बस आज थोड़ा सा मन बेचैन है, और तभी किसी अपने की मुस्कान दिख जाए तो सब हल्का लगने लग जाता है। आज अगर मौका मिले किसी अपने को मिलने का तो मुस्कुराइएगा, दिल खोल के मुस्कुराइएगा, क्योंकि सच्ची मुस्कुराहट ना कभी कभी आती है और जिसको देख कर आती है वो खास होता है। मैंने पूछा था, कौन है आपके दिल के सबसे करीब, कौन है जिसको देख कर दिल का मौसम बदल जाता है, बताइए।

ना मेरे फेसबुक पेज पर जाके, जो है रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, बने रहिए, सुनते रहिए। और फिलहाल लता जी और रफ़ी जी की आवाज़ में ये वाला गाना बिल्कुल आपके कानों के पास में आ रहा है।

0: that.
1: Stay tuned to 100.3 FM, Radio Pink City.
2: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
3: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है।
2: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
3: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
4: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
5: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
3: आप हैं आरजे प्रियदर्शिनी के साथ, प्रियदर्शिनी के साथ ओनली ऑन 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
4: रेडियो पिंक 100.3 एफएम, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। और अभी गुलाम अली साहब की जो गजल आपने सुनी, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। वाकई में हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो इश्क है, एक मुसाफिर की तरह ही तो होता है। इश्क अगर सच्चा हो तो उसमें शोर नहीं होता, कोई नुमाइश नहीं होती, बस गहराई होती है। वो कहते हैं बहुत खूबसूरत सी बात यूं या यूं कहा जाए कि खूबसूरत सा शेर अर्ज किया है, मोहब्बत रंग दे जाती है। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल की हवाओं को, मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल की हवाओं को, कोई मौसम नहीं रहता फिर उसके बाद मौसम सा। इश्क इंसान को भीतर से बदल देता है, नजर बदलती है, सोच बदलती है, दुनिया बदल जाती है। पहले जो साधारण सा लगता है ना, बस वही खास लगने लग जाता है। शायद यही इश्क की नफासत है, वो बिना बताए दिल के भीतर अपना घर बना लेता है। आइए इस घर के नाम, इस इश्क के नाम ही गजल पंकज उदास साहब की। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आपके दिल में किसने घर बनाया बताइए मुझे, मेरे फेसबुक पेज पे जाके, जो है रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम।

अक्सर जब ख़तों के जवाब आते हैं तो दिल अपने आप में बड़ा ही खुशनुमा सा हो जाता है ना, ये वही पल होता है। 11:54, प्रियदर्शनी आपके साथ में है, शुक्रवार का दिन है, प्रोग्राम चल रहा है रह गुजर लीजिए। बात करते करते आज का समय, आज का दिन भी गुजर गया। वो कहते हैं ना कि हर दिन नया है, कल जो छूट गया उसे जाने दीजिए। और बहुत ही खूबसूरत सी बात यहाँ पर किसी ने कही है, कुछ शेर यूँ अर्ज है, धूप निकलेगी ये बादल नहीं रहने वाले, धूप निकलेगी ये बादल नहीं रहने वाले, वक्त सबका है ये पल नहीं रहने वाले। उम्मीद जो है ना वो इंसान की सबसे खूबसूरत ताकत है। जब सब कुछ धुंधला सा लगे तब भी भीतर कहीं एक रोशनी जो है वो बची रहती है, जो कहती है नहीं अभी सब खत्म नहीं हुआ। शायद इसी उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, शायद इसी उम्मीद पर आप हैं, हम हैं, और इसी उम्मीद पर कि फिर आपकी और हमारी मुलाकात होगी। 11:55 और 31 सेकेंड, शुक्रवार का दिन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी।

0: छोटी सी रात वो लंबी कहानी।
1: वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाकई में कभी कभी बचपन, कभी कभी कोई छूटा हुआ पल याद आता है, लेकिन आगे चलते जाना ही तो ज़िंदगी है ना। जैसे आज मैं प्रियदर्शनी बहुत सारी बातें की, हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों ने साझा की है, और इसी के साथ में खूब सारे गाने भी सुने हैं। तो चलिए आगे फिर मुलाकात होगी यहीं पर रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM पर। तब तक मुझे यानी प्रियदर्शनी को दे दीजिए यहीं पर इजाज़त। टेक केयर एंड बाय।

अभी आप सुन रहे थे एफएम रेडियो पिंक सिटी। हम विविध भारती के जयपुर अजमेर के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके बाद आप जुड़ेंगे राष्ट्र सेवा विविध भारती के एक कार्यक्रम से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडस टैग जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और

0: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार्स में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। मिलो न तुम तो हम, फिल्म है हे राजा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: प्रत्येक शनिवार शाम 7 बजे सुनिए विशेष

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

होटल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदिवर के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रम। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल प्रस्तावित राजस्थान दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा आज जोधपुर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, यातायात प्रोटोकॉल, हेलीपैड, सभास्थल तथा अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए रिफाइनरी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज जोधपुर और बालोतरा के प्रवास पर रहेंगे। श्री शर्मा पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण कर

0: HPCL के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल सुबह जोधपुर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कर संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे पचपदरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देश की पहली ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे। माय भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि उद्योग और माय भारत के बीच सहयोग से युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने में मदद मिलेगी। युवा मामलों के विभाग की ओर से हुए इस सम्मेलन का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित कराना था। साथ ही उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना रहा। कार्यक्रम में एसोचैम, फिक्की, सीएआईटी और सीआईआई सहित प्रमुख उद्योग निकायों ने भाग लिया। प्रदेश में राजस्थान समान नागरिक संहिता यूसीसी 2026 के संबंध में संभाग स्तरीय जनसुनवाई की जा रही है। इस दौरान आम नागरिकों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हनुमानगढ़ में प्रारूप समिति के सदस्य डॉ. शुचि चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीकानेर संभाग की जनसुनवाई की। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए। बैठक में प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर आमजन से भी निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की गई। इधर जयपुर कलेक्ट्रेट में 10 और 11 जुलाई को जयपुर संभाग स्तरीय जनसुनवाई होगी। राज्य के पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 8 सेंटीमीटर पानी जयपुर के सांभर में बरसा, वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। इस दौरान तेज झोंकेदार हवाएं चली। विभाग ने अगले 4 दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून के छाने की संभावना जताई है। जैसलमेर को छोड़कर समूचे प्रदेश के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बारिश से अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के लिए अभ्यर्थी आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 607 पदों के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा का इस साल 6 दिसंबर को होगी और मुख्य परीक्षा का आयोजन अगले साल 1 और 2 मई को प्रस्तावित है। इसमें राज्य सेवा के 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पद शामिल हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 497.51 मीटर।
2: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 100.3 MHz पर। आइए आपको जोड़ते हैं राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से, जहां आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

0: राजकुमार फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थी। हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही लिखा है, साधना। और बहुत सारे श्रोताओं ने तुरंत तुरंत लिख डाला कि इबारत में कौन से गाने थे। किसी ने लिखा है रिमझिम की, गिरे सावन, सावन के झूले पड़े, कौन परदेसी मेरा दिल ले गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र बारिश के आगमन पर आधारित है, सचमुच गर्मी के दिन हटने का संकेत बारिश का आना देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीले सफ़र में शायद रिमझिम बरसात, सावन के झूले इन्हीं शब्दों के साथ सजने वाली है। और एक श्रोता ने टिप्पणी की है कि रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तो मन भी अनगिनत मधुर यादों में भीग जाता है। झूलों की मस्ती, पवन का शीतल स्पर्श और घर गिरते बादलों के बीच किसी अपने के आने की आस दिल में नई धड़कनें जगा देती है, फिर एक परदेसी मुस्कान के साथ दिल चुरा लेता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें झूले की याद तो ननिहाल के साथ ही छूट गई, ननिहाल की याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 28 तारीख से सावन लग रहा है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बारिश की भीगी फुहारों के बीच सावन का सुहाना मौसम, प्रेमी से पहली मुलाकात, दिल का इकरार, जन्म जन्म का साथ, प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया, यही पूरी इबारत का भाव है। इसलिए आज का सुरीला सफ़र में अधिकतर गीत सावन, रिमझिम, बारिश, बादल, परदेसी, दिल, प्यार, इकरार, चुनरिया, नूर जैसे शब्दों पर आधारित होंगे। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह लिखा है, बहुत सारे गाने लिखे हैं, क्या करें हम, कौन सा वाला गाना सुनवाएं, कौन सा छोड़ें। लेकिन आज खास बात यह है कि आपकी लिस्ट में जो गाने हैं हमारी लिस्ट में भी है।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: गीतकार का नाम जरा बताइए।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं तो बताइए।

घराना फिल्म का गाना था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार रवि। और ये हमारा सवाल भी था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है, एक आध श्रोता ने गीतकार का नाम गलत बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, बचपन में हम जहाँ रहते थे वहीं एक नीम का पेड़ था जिस पर झूला बांधा जाता था। एक बार मैं झूल रहा था और झूले को बहुत ऊपर तेज करता हुआ झूल रहा था, तभी पटिए से रस्सी सरक गई और मैं सर के बल नीचे गिर गया। वो तो भगवान की दया से कोई अनहोनी नहीं हुई। ऐसी घटनाएं पहले हुआ करती थी, लेकिन तब इम्यूनिटी लोगों की बहुत मजबूत थी, चोट जल्दी से ठीक हो जाती थी, चोट जल्दी से ठीक हो जाया करता था। और वो चोट भी ऐसी होती थी कि कई बार माँ पिता साथ में होते थे, भाई बहन साथ में होते थे, उनके जो प्यार का फाहा होता था ना, उससे भी चोट हरण हो जाती थी। लेकिन ये जो घटना घटित हुई ये थोड़ी रिस्की थी, तो जब भी कभी आप झूले पर झूलें तो इतनी ऊंचाई तक मत जाएं कि गिरने का डर हो। वैसे भी इतनी ऊंचाई पर अमूमन नहीं जाना चाहिए कि गिरने का डर बना रहे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तभी उस मस्ताने परदेसी ने सामने आकर दस्तक दी, मेरी धड़कनें थम गई और मैं अनजाने ही उसकी हेर फेर करके लिखा है कुछ। एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम बरसे बदरवा फिल्म रतन, गायिका जोराबाई अंबाले वाली। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन में झूले का चलन नहीं है, अतः चौखट में ही रस्सी बांधकर बच्चों को हम झुलाते हैं। और अब तो आप बालकनी में, बरांडे में, आंगन में, जो घरों में छत होती है, छतों में कुछ लोहे की छड़ लगाकर झूले डाल लिए जाते हैं, लेकिन वो जो पेड़ के नीचे के झूले की बात होती है वो निराली होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही तुमने पुकारा और हम इस सुरीले सफर में चले आए, कुछ यादों की बारात लेकर आए और कुछ मौसम का अंदाज लेकर आए। घनघोर छाए बादल कुछ बरस रहे हैं, कुछ गरज रहे हैं, कुछ लुका छिपी खेल रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह जब मैं जागा तो मुझे ऐसा लगा कि रात को हमारे शहर अजमेर में झमाझम बारिश हुई है और मैं सोता रहा। सुबह छत पर छतरी लगाकर पहुंचा तो भीगा मौसम, रिमझिम बरसता सावन, खुशी से झूमते पेड़ घर के गार्डन में और आसपास के घरों में, और सामने मनमोहक पहाड़ों का नज़ारा। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हवाएं, बहारें, फूल और खुशबू, रंग, उमंग, संगीत, सावन का मौसम सच में जादूगर है। कोयल का पंचम महक रहा है और धरती सुगंध की सरगम से गुनगुना उठी है। वैसे तो बसंत के मौसम को ऋतुओं का सिरमौर कहा जाता है, मगर सावन की ऋतु भी कुछ कम नहीं है। ये मौसम अपने रंग भरी कूची से पूरी प्रकृति को सजा देता है। मौसम से बंधे मन लिए घूमते हैं, आंखें ऋतु निहारती हैं और मन उसके मुताबिक शब्दों के मोती चुन गीत गुनगुनाने लगता है। जैसे ऋतु वैसा मन और वैसा ही गीत। लीजिए सुनिए फिल्म मंजिल, बताइए कौन है हीरो, कौन है हीरोइन।

मंजिल फिल्म का गाना था और हमारे सभी श्रोताओं ने लिखा है मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन होते हैं। फिल्म मंजिल रिमझिम गिरे सावन मुंबई के बेहतरीन दृश्य में है, मरीन ड्राइव पर फिल्माया गया था ये गाना और बहुत ही सुंदर दृश्य है। मरीन ड्राइव से जो ऊंची ऊंची समंदर की लहरें आती हैं उसी में भीग रहे थे और इस समय तो बारिश के मौसम में वैसा ही नज़ारा है, बिल्कुल सड़कों तक पानी आ जाता है, लेकिन हाँ खतरा भी होता है। इसलिए हम बार बार श्रोताओं से कहते हैं कि जो भी मुंबई में हैं या घूमने आते हैं, मरीन ड्राइव पर जाते हैं, तो जब ऊंची लहरें उठें और चेतावनी हो तो बहुत नज़दीक ना जाएं, समंदर के नज़दीक ना जाएं, वो ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, बारिश की हर एक बूंद दिल की सूखी ज़मीन पर प्यार का एहसास बनकर उतरती है। बारिश की रिमझिम में भी एक अलग ही सुकून छुपा होता है, भीगी हवाएँ होती हैं, झूमते पेड़ और बरसती फुहारें। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जन्म लेने वाले उस प्रेम की कोमल अनुभूति है जहां प्रकृति संगीत और मन के भाव एकाकार हो जाते हैं। रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तब मन के सूने कोने में भी अनकहे भाव अंकुरित होने लगते हैं। ये उसी भीगे एहसास की कहानी है जहां बादलों की गूंज, झूलों की मस्ती और मधुर तरानों की मिठास मिलकर प्रेम को एक शाश्वत स्वर देते हैं, जहां सावन की हर बूंद मानो प्रिय के स्पर्श का आभास कराती है और हर धड़कन एक ही नाम का संगीत बन जाती है। प्रेम का ये रंग ऐसा है जो एक बार मन पर चढ़ जाए तो हर सावन उसी प्रिय की याद और प्रतीक्षा का उत्साह बन जाता है। तो बताइए, झूले के दौरान जब कभी आपने झूला झूला हो तो क्या प्रिय की याद आई है या प्रिय साथ में रहे हैं? कोई याद है तो ज़रूर साझा कीजिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर ये झूले वाला ही गीत, बहु बेगम फिल्म, बताइए कौन है हीरोइन, गीतकार का नाम भी बताइए जरा। लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। बूझिए हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम। फिल्म है बहु बेगम।

बहु बेगम फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें थी। गीतकार का नाम नहीं बता सकते अभी क्योंकि आपकी ओर से जवाब नहीं आया है, और हीरोइन का नाम पूछा था वो भी अभी हमें नहीं मिला है। तो जब आप जवाब बताएंगे तब हम बताएंगे कि सही जवाब क्या था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में झूलों का बड़ा शौक था, अभी भी झूला देखने पर तो एक बार ज़रूर ही बैठ जाते हैं। पिंक ऊँचा उड़ाने में गिर गई और हाथ टूट गया, तब से थोड़ा डर लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ओ निगाहें मस्ताना, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, इतना तो कह दो तुमसे ही प्यार है, मतलब गाने के बोल इन्होंने लिखे हैं जो हमने इबारत दी थी। और जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं है उन्हें बता दें कि हम इस प्रोग्राम में एक इबारत लिखते हैं और उस इबारत से श्रोता शब्द ढूंढकर गाने हमें सुझाते हैं, और हम भी पहले से गाने कुछ ढूंढ के रखते हैं और फिर उसी अनुरूप टिप्पणियां आती हैं और श्रोताओं की टिप्पणियां हम इसमें शामिल करते चलते हैं। तो आज की इबारत जरा एक बार हम दोहरा देते हैं जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं उनके लिए। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन के फुहारें बरस रही थी और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिराए बदरा डैश डैश डैश। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया, मेरी धड़कनें रुक सी गई, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल ले गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, लगी ऐसी लगन गहरी की ये नाता जन्म जन्म का बन गया। अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है, बस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंगों में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। और अब देख रहे हैं कि हमारे श्रोता कौन सी टिप्पणी लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत साल पहले हमारे गांव में, गांव के बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता था जिसमें सावन के आते ही झूले पड़ जाते थे, औरतें झूलती और गीत गाती थीं। तो अब आगे बढ़ें और अगला गीत सुनवाते हैं आपको ये।

घर आ जाए घिर आए। कभी आपने किसी के इंतजार में ये गाना गाया है? फिल्म थी छोटे नवाब। अगर गाया है तो जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की तो बहुत तादाद है, लगभग यूं कहें कि बाढ़ तो नकारात्मक हो जाता है, लेकिन हाँ बहुत लंबी तादाद में टिप्पणियाँ आ रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम पढ़ते जाएं। ज़रा संक्षेप में लिखिए तो ज़्यादा तादाद में टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि मदमस्त मौसम की मादकता को मधुमेह बनाती इबारत है, हुस्न इश्क को ऊर्जा उत्सर्जित करती शीतल बयार, और रिमझिम फुहार मानो प्रकृति प्रदत्त प्रेमांजलि हो और प्रेमी युगल को आवाहन कर रहा हो। इस प्रेम रस में सराबोर हो, सर्वस्व लुटा प्रेम में हो जाओ, रिमझिम के तरानों के सुरीले सरगम सफर का इंतजार है। भाई इंतजार तो खत्म हो चुका है और अब ये सुरीला सफर जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आहा आज तो गजब के गाने हैं और हमने आपको देखा था मुंबई में बारिश में भीगते हुए। आप सब भी भीगते हैं बारिश में। आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए और कोई ख़ास याद है, कोई ख़ास बात है तो ज़रूर बताइए। कौन सी वाली बारिश आपको याद आती है, बचपन वाली बारिश या बड़े हुए तब की बारिश? अब तो बारिश से डरते भी होंगे, भीग जाएंगे तो कहीं सर्दी जुकाम हो जाएगा। बचपन में वो डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि बीमार होने के नुकसान क्या होते हैं।

0: चलिए बहरहाल आगे बढ़े। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत तो इबारत में ही छुपे हुए हैं, फिर हम नहीं बताते, पर हाँ शब्द तो बता ही सकते हैं ना। तो सावन झूला, बदरा तराना, परदेसी दिल प्यार और नूर मस्ताना इकरार, और भी बहुत कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है क्योंकि आज सुरीला सफ़र बेहद सुरीला होने वाला है, क्योंकि रिमझिम के तराने लेकर बरसात जो हो रही है, और एक परदेसी आकर मेरा दिल ले गया है जिसके प्यार में हम सारा आलम खो बैठे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और गानों के बोल लिखे हैं, पड़ गए झूले सवन ऋतु आए रे, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। दरअसल आज आपके गाने और हमारे गाने बहुत मैच हो रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो गाने हम आप सुनना चाहते हैं वो हम लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये मौसम भीगा भीगा, हवा भी ज़्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल, तुमको पाने का इरादा है। और हम घर से छाता लेकर निकलते हैं तो बारिश नहीं होती, और कभी कभी इतनी जोर से होती है कि छाता होकर भी भीगना पड़ता है, और कई बार हवा के कारण छाता उल्टा भी हो जाता है। लेकिन भीगने में क्या मज़ा होता है ये तो आप बताएंगी, रेडियो सखी बताएंगी आज के सुरीला सफ़र प्रोग्राम में, वो तो भाई आप सभी बता रहे हैं ना, और हम तो आपकी बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। और एक उन्होंने आगे लिखा है कि आज जाने माने अभिनेता राजकुमार का स्मृति दिन है। राजकुमार संवाद बोलने के उनके विशिष्ट ढंग से जाने जाते थे, और जानी आज उनकी फिल्म के भी कुछ गीत शामिल हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसके लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। तो ज़रा आप बताइए कि कौन है हीरो हीरोइन, शुरू में हम बता चुके हैं वैसे।
1: एक समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, ओ निगाहें मस्ताना,

मस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लब

0: सितना।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना था किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत था, देव आनंद और नूतन होते हैं इस फिल्म में, और बहुत सारे श्रोताओं ने दरअसल इस गाने का जिक्र किया था इसलिए ये गाना यहाँ पर बिल्कुल प्रासंगिक था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने सुरीले सफ़र के शुरू में ही फिल्म जगत के ऐसे महाराजा को याद किया जिन्हें दुनिया राजकुमार के नाम से जानती है। सचमुच अद्भुत शख्सियत थी उनकी, गले में स्कार्फ, बात करने का रौबदार तरीका, सफ़ेद जूते पहनकर जब वो जानी कहते थे तो सिनेमा घरों में तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थीं। यूं तो उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है उनकी फिल्म वक्त का राजा का किरदार। फिल्म में वो एक चोर थे लेकिन उनका रौब किसी महाराजा से कम नहीं था। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने राजकुमार जी से जुड़ी हुई लिखी हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूला नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है, हवाओं में कोमल और रेशमी ठंडक के साथ मिट्टी की सौंधी महक घुलती जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी टिप्पणी तो सिर्फ एक लाइन की है तो शामिल नहीं हुई भाई, लेकिन आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी शिकायत लिखिए तो कैसे शामिल हो सकती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि इतने दिन से मौसम और बारिश के गीत बज रहे हैं लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे शहर के मौसम से मैच हुआ है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। सुनिए अब ये गीत और याद कीजिए अपनी कोई ख़ास बात। संगीतकार का नाम ज़रा बताइए और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात भी बताइए। बारिश का मौसम और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई बात है बताइएगा जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। गीतकार कौन है ये भी बताइए। फिल्म है दुल्हन एक रात की,

हमने आपसे पूछा था कि कौन है संगीतकार और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने, कुछ श्रोताओं ने जवाब सटीक दिया है। संगीतकार मदन मोहन, और ये जो जुलाई का भीगा मौसम है, बार बार मदन मोहन की याद दिलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भीगे मौसम से हमारे मन से जुड़ जाते हैं। 14 जुलाई मदन मोहन साहब की याद का दिन है, उनका स्मृति दिवस है। कुछ श्रोताओं ने सही सही लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के झूले केवल डालियों पर नहीं पड़ते, वे तो हर बरस हमारे मन में भी बचपन की मीठी यादों को फिर से झूला झुलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चेरापूंजी से लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पर उठना बैठना सोना जागना सब कुछ बरसात में ही होता है, और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मेरे साथ रहती है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में नाजायज़ फिल्म का गीत सुनवाइए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूले नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं, दूसरों को देने से भी है, तभी यह आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। भाई, अभी जो चेरापूंजी से जो श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती सुन रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि उतनी दूर से विविध भारती से जुड़े हुए हैं। ज़रा वहाँ के कुछ आबोहवा के बारे में, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, और ये भी बताइए कि जब हमेशा बरसात होती है तो आपको एहसास कैसा होता है, क्योंकि जब लगातार बारिश हो तो कई बार ऊब भी होती है एक ही मौसम से। जैसे मुंबई में भी तकरीबन 4-5 महीने बारिश होती रहती है, तो बारिश की शुरुआत तो बड़ी सुखद लगती है, लेकिन धीरे धीरे ऊब सी होने लगती है। तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ घनघोर बरसात होती है, तो आप अपने बारिश से जुड़े हुए अनुभव साझा करते रहिए। और जो आप, जिन श्रोता ने चेरापूंजी से लिखा, उनसे खास अनुरोध कि आप अपने अनुभव लिखिए। हाँ, तो दोस्तों, हमने आपसे ये पूछा था कि संगीतकार का नाम मदन मोहन, और फिल्म थी दुल्हन एक रात की, इसी फिल्म का गाना हमने अभी सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्दकार थे राजा मेहदी अली खां। और जब बात चलती है मदन मोहन की, तो लगता है कि जुलाई के इस महीने में उनकी याद का दिन है और जून में उनका जन्मदिन, तो फिर क्यों न एक गाना और हो जाए। तो मदन मोहन साहब के नाम ये गाना, और ज़रा फिल्म का नाम आप बूझिए, क्या है फिल्म का नाम।

फिल्म थी वो कौन थी, और यही था हमारा सवाल। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत था। एक आध श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, फिल्म का नाम वो कौन थी। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि 1992 में तलाजा से ऊंचे गांव में मेरे मित्र, उनके पिताजी दोनों अपने बेटों के साथ जा रहे थे कार से, और जब लौटे तो एक नदी थी जो भर आई थी, जिसकी वजह से गांव के उस पार जाना मुश्किल था। कुछ इन्होंने अलग भाषा में लिखी है जिसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर गलत हो तो भाई माफ़ कीजिएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि हम गांव तो चले गए, खाना खाकर लौटे, सड़क पर पानी भर गया था। ये बारिश धीमे धीमे बरस रही थी लेकिन पानी उतर नहीं रहा था, मतलब पानी ज़्यादा हो गया था, तब तक तो पूरी रात रोड पर ही बितानी पड़ी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश और पानी की बातें हैं, मुझे दो बूंद पानी फिल्म का शीर्षक गीत याद आ रहा है, राजस्थान का खाली नहर, और बारिश होने पर नहर भरे, वहाँ के लोगों को जीवन मिले। अब सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, ज़रा आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं कौन श्रोता सही जवाब दे पाते हैं, गीतकार संगीतकार, फिल्म सारंगा, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें हैं।

सारंगा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 2 महीने की छुट्टियों के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल खुलते थे और एक परदेसी सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो परदेसी कोई और नहीं था बल्कि एक रिक्शा वाला था जो स्कूल ले जाने के लिए किसी यमराज से कम नहीं लगता था। भाई अगर स्कूल नहीं गए होते, पढ़ाई नहीं की होती तो आज क्या होते, ये याद कीजिए। और बचपन का संसार बड़ा अलग ही होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बहरहाल अब तो बहुत ही कम वक्त है कि हम आपसे कहें कि यादें साझा कीजिए। बस प्रोग्राम का आखिरी गीत है जिससे पहले हम ये टिप्पणी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि बादल मेरे शहर में है, बारिश होगी कि नहीं कह नहीं सकती, पर आज मुझे खुशी है कि सब्जेक्ट के रूप में मैं पास हो रही हूँ, जवाब दे रही हूँ सही। और एक श्रोता ने, मैंने रंगली आज चुनरिया के प्रेम के समर्पण की बात की है कि मन के उल्लास का बेहद मधुर गीत है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज मेरे सुझाए 4 गाने शामिल हुए, कुछ ने लिखा है कि 3 गाने शामिल हुए, किसी ने लिखा है मेरे 6 गाने मेरी पसंद के शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा जानकर। सुनिए, एक श्रोता ने इस गाने का भी जिक्र किया है और आप सब में से कितने लोगों ने सोचा था ये गाना बजेगा अभी, फिल्म है फागुन। कोई सवाल नहीं है, आप चाहें जो जानकारी दे सकते हैं। कमर जलालाबादी के बोल, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाज़ें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: सुझ गया, ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक शनिवार शाम 7 बजे सुनिए विशेष जयमाला, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
4: सुझाया था ये गाना, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक हो गई। और एक श्रोता ने जानकारी दी, एक क्या कई श्रोताओं ने, कि फिल्म फागुन मधुबाला और भारत भूषण संगीतकार ओपी नैयर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, कमर जलालाबादी के बोल। अब प्रोग्राम का सफ़र आज बस इतना ही। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 35वीं कड़ी।

0: राष्ट्र ध्वज आज हमारा राष्ट्रीय सम्मान बिंदु है। भारतीय संस्कृति में भी ध्वज का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय युद्धों में अग्रभाग में रहने वाले ध्वज की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक संभाल कर रखा गया है। रामायण महाभारत काल में प्रमुख योद्धाओं के अपने अपने अलग अलग ध्वज होते थे। इतिहास काल में महाराणा प्रताप का चांगी नामक सूर्य के चित्र वाला ध्वज प्रसिद्ध था। छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक था। आगे चलकर पेशवाओं के काल में यह ध्वज उत्तर में अटक तक फहराया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध यह लड़ाई भले ही प्रत्यक्ष रणभूमि पर आमने सामने की न रही हो, फिर भी अंग्रेजों के यूनियन जैक को चुनौती देने के लिए ऐसे एक ध्वज की आवश्यकता थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय भारत का अपना एक स्वतंत्र पहचान वाला राष्ट्र ध्वज हो, यह सोच सन 1900 के बाद सामने आई।
1: 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में भारत का विशेष रूप से तैयार किया गया पहला ध्वज भगिनी निवेदिता ने प्रदर्शित किया था। उस पर वंदे मातरम शब्द बांग्ला लिपि में लिखे हुए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो पहली बड़ी सभा हुई थी, उस सभा को एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में फिर से 7 अगस्त 1906 को एक सभा आयोजित की गई थी। कलकत्ता के पारसी बाग में हुई उस सभा में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के हाथों वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज फहराया गया। ये ध्वज कृष्ण कुमार मित्र, उनके दामाद सचिंद्रनाथ बोस, पुत्र सुकुमार मित्र, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्रनाथ दत्त की कल्पना से तैयार हुआ था। ऊपर की हरी पट्टी पर खिलते हुए 8 कमल थे और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर चांद सूरज अंकित थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम शब्द लिखे थे।
0: बाद के विभिन्न विरोधी आंदोलनों की अनेक सभाओं में यह ध्वज फहराया गया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होने तक यह वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज लगातार उपयोग में लाया जाता रहा। इसे ही भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के आधुनिक कालखंड में फहराया गया आद्य राष्ट्र ध्वज माना जाता है। इस ध्वज का प्रभाव देश में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के मन पर भी पड़ा था। इस ध्वज से प्रेरणा लेकर उन्हें विदेश में भी अपना ध्वज फहराने की प्रबल इच्छा हुई होगी।
1: इसके ठीक एक वर्ष बाद 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में भारत की प्रतिनिधि के रूप में फ्रांस से गई मादाम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाली थी, ये निश्चित हो गया था। उसी समय ध्यान में आया कि इस अधिवेशन में प्रदर्शित करने के लिए अपना स्वयं का ध्वज होना चाहिए। लंदन में पढ़ रहे सावरकर, मादाम कामा और सरदार सिंह राणा के बीच चर्चा होने लगी। अन्य देशों के तत्कालीन ध्वजों को देखते हुए अपना ध्वज भी 3 रंगों वाला विशिष्ट होना चाहिए, ऐसी कल्पना साकार हुई। ये ध्वज बनाते समय लंदन में ही पढ़ रहे कलाकार क्रांतिकारी हेमचंद्र दास कानुनगो की सहायता मिली।
0: अगस्त 1907, अधिवेशन का तीसरा दिन। सफेद साड़ी पहने हुए, पारसी पद्धति से सिर पर पल्लू लिए हुए मादाम कामा ने अपने पल्लू के नीचे छिपाया हुआ वह रंगीन ध्वज अचानक सबके सामने दोनों हाथों से ऊंचा उठा दिया। उस समय पूरे सभागृह में मादाम कामा की शुभ्र मूर्ति के कारण बिजली कौंधने जैसा आभास सारे सभागृह को हुआ। इस रंगीन ध्वज के रंग भी उतने ही तेजस्वी थे। मादाम कामा के सहज तेज को शोभा

0: गज की ऊपरी पट्टी हरी थी, उस पर 8 प्रांतों के प्रतीक 8 कमल, बीच का रंग केसरिया और उस केसरिया पृष्ठभूमि पर भारतीय स्वतंत्रता के शब्द रूपी हुंकार वंदे मातरम और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य तो दूसरी ओर चंद्रमा थे। ये तीनों रंग जातियों या धर्मों के रंग नहीं थे, ये भारतीय संस्कृति के रंगों और मानव जीवन के गुणात्मक अर्थ को बताने वाले थे। हरा रंग धैर्य और उत्साह का, केसरिया रंग विजय और वैराग्यपूर्ण जीवन का, तो लाल शक्ति का प्रतीक था। 8 कमल भारत के उस समय के 8 प्रांतों के प्रतीक थे, तो चांद सूरज शीतलता और ऊर्जा के प्रतीक थे।
1: मादाम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखते हुए पल्लू में छिपाकर लाया हुआ ध्वज बाहर निकालकर ऊंचा उठाते हुए कहा,
2: दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बिहोल्ड इट इज बॉर्न, इट इज ऑलरेडी सैंक्टिफाइड बाय द ब्लड।
3: ये भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, देखो इसका जन्म हो चुका है, ये पहले ही भारत के शहीदों के रक्त से पवित्र हो चुका है। मैं आप सभी सज्जनों से आह्वान करती हूँ कि उठें और इस ध्वज को सलाम करें। मैं आपके सामने ये छोटा सा भारतीय ध्वज फहराती हूँ मित्रों, और भारतीय राष्ट्र के नाम पर आपसे न्याय के लिए लड़ने का आग्रह करती हूँ। मैं आपके सामने ये भारतीय ध्वज एक बार फहराती हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने जीवन काल में ही भारतीय गणराज्य की स्थापना देखने की पूरी आशा है। इंडिया एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम। वंदे मातरम।

विदेश में भारत का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया गया यह पहला ध्वज था। इस ध्वज पर भी बीच में वंदे मातरम शब्द लिखे थे। अंतरराष्ट्रीय परिषद में इस ध्वज ने खलबली मचा दी। ऐतिहासिक मादाम कामा के ध्वज और इस कलकत्ता ध्वज में समानता है। इस ध्वज का चित्र या प्रतिकृति भारतीय क्रांतिकारियों के माध्यम से विदेश में क्रांतिकारियों तक पहुंची होगी। इन दोनों ध्वजों में महत्वपूर्ण अंतर यह था कि वंदे मातरम शब्द दोनों ध्वजों पर होने के बावजूद कलकत्ता ध्वज पर वे पीले रंग की पृष्ठभूमि पर नीले रंग में थे, जबकि मादाम कामा के ध्वज पर वे सफेद रंग में थे और वंदे मातरम में म अक्षर हटाकर र अक्षर पर अनुस्वार लगाया गया था। 20वीं सदी के पहले दशक में एक एक वर्ष के अंतराल पर बनाए गए भारत के पहले तीनों ध्वजों पर वंदे मातरम शब्दों को ही अग्रस्थान मिलना यही विशेषता है।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार नेहा देसाई, तकनीकी सहयोग रमेश धकाते, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से

0: की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।

0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
1: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एक नई खुशी। जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
3: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

पाकीजा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कैफ भोपाली के बोल थे, गुलाम मोहम्मद का संगीत था। आइए अब सुनते हैं काजल फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, रवि का संगीत।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ऊंचे लोग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: हमराज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे कानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध आरती पर। ये प्रोग्राम का आखिरी गाना है, फिल्म है नूर महल, सुमन कल्याणपुर की आवाज, सबा अफगानी के बोल हैं, जानी बाबू कव्वाल का संगीत है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए आज किस सखी से बात हो रही है हमारी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना, वैसे बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हूँ अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है, तो बताइए हर्षा जी क्या करती हैं आप?
1: देखिए वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ
0: जी,
1: मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ, मैं इंग्लिश हिंदी मराठी में ट्रांसलेशन करती हूँ
0: जी। ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया, ये उन्हीं के लिए संभव है जो ये दो तीन भाषाओं को बहुत

0: अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी।
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है।
0: जी
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
0: जी।
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया, तो
0: जी
1: मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं।
0: जी रेडियो सुनना पसंद है आप?
1: रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल। और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए अगर फिलोसफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
0: ये तो बहुत सटीक बात की आपने। और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात करके।
1: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए,
0: जी
1: वो मैं सुनना चाहूंगी।
0: जी जी तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आलिया बानो बोल रही हूँ, गुजरात से।
0: आलिया बानो गुजरात से?
1: हाँ
0: जी आलिया बानो, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: टंकी नवाते पड़ती हूँ और घर पर ही रहती हूँ, और घर के जो काम होते हैं ना छोटे मोटे वो सब करवा देती हूँ।
0: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है कहीं घूमने फिरने, आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
1: हाँ जाती हूँ ना परिवार के साथ ही।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है,
0: हाँ वो
1: मुझे
0: तो
1: दिखाई
0: है
1: नहीं देता है ना।
0: जी, ये तो सहयोग
1: हाँ
0: परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये
1: हाँ
0: मुझे जी
1: मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है, मेरी दीदी है ना तो मेरी अम्मी, वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है मुझे सच्चे काल, मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ, मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ
0: जी
1: जाना है कैसे जाना है, मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना कुछ काम करना होता है तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं, यानी कि आप कदम गिन लेती हैं, या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाईं तरफ ये है दाईं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
1: नहीं मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है,
0: जी
1: मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ना
0: जी
1: ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ,
0: अच्छा।
1: हमारा एक माले का घर है ना वहाँ कर रही हूँ, तो
0: जी
1: मैं
0: जी
1: नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ
0: अच्छा, मतलब आप पहली
1: चक्कर।
0: मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती
1: हाँ
0: हैं ये सब?
1: अब थोड़ा आप कर लेती हूँ, एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है किस तरह जाना है किस तरह आना है तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं, आप इसको किस
1: बहुत
0: तरह से
1: खुश,
0: लेती हैं?
1: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, ऐसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे है उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ
0: जी
1: लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ, कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ सहेलियों के साथ घूमती है तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ
0: जी
1: ही क्या हो रहा है, लेकिन
0: जी
1: फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती, मैं ऐसा
0: देखिए
1: सोचती हूँ कि ऊपर वाला जिस हाल में रखे उस हाल में ही ले
0: जी
1: लेना
0: जी
1: चाहिए।
0: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है
1: हाँ
0: फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। आपकी बातें सुन के
1: हाँ
0: हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर ज़िंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयाँ आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए, अंदाज फिल्म का, अंदाज
0: अंदाज फिल्म का
1: है ना।
0: जी
1: हाँ आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
0: बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि, राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं, राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: कार्यक्रम हेलो सहेली में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ,
0: क्या
1: एक
0: बात
1: शायरा हूँ
0: जी।
1: जी, एक कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरी कशिश, मेरा पेन नेम है लहरी,
0: पेन नेम है आपका लहरे।
1: लहरी, और मेरी किताब जो प्रकाशित हुआ है उसका नाम है लहरी कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी,
0: जी
1: थोड़ा बहुत लिखती थी। शुरू में चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
0: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
1: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
0: जी।
1: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील।

0: ये
1: वही, क्या
0: बात
1: मैं सही बोल रही हूँ?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो
0: जी
1: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ,
0: बिल्कुल
1: और उसके
0: सुनाइए।
1: बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
0: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हों, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए।
1: जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
0: जी
1: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यूं दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे हैं लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है किनारा भी तुझ में, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
0: बहुत सुंदर, बहुत
1: जी
0: बहुत ही
1: शुक्रिया।
0: प्यारा। हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी, और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ ये लहरें कभी सुख की आती हैं कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि, राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं, राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोकराव देशमुख है, मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी क्या करती हैं आप?
1: मैं मैम खाना बनाने का काम करती हूँ।
0: अच्छा, यानी टिफिन सर्विस।
1: घर में खाना बनाने को जाती, मैं रोटी बनाती सिर्फ, चार पांच घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे जाके
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती।
0: अच्छा।
1: फिर बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर देती हैं
1: सब
0: कि आप
1: जॉब
0: जाकर।
1: करने वाले हैं ना यहाँ पे,
0: जी
1: टीचर
0: जी
1: है तो टीचर क्या ही सब काम करती मैं।
0: जी और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो
1: नहीं
0: जाती हैं।
1: रुके,
0: जी
1: हाँ बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीज़ों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का, थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी
0: जी
1: उतनी कमाते बस, ज्यादा करके भी अपने तबीयत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही रहते हैं, माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए, हाँ तो भाई क्या ही रहती मैं।
0: तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और
1: खुशी
0: सकारात्मक
1: के साथ
0: सोच रख
1: गुजार
0: के आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती
1: मैम,
0: हैं। और
1: मैं मेरी सहेली के नाम लेती,
0: जी ले लीजिए।
1: हाँ बबीता ठाकुर और एक शहना शेख है।
0: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन
1: हाँ
0: सा
1: हाँ
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना मैम।
0: चलिए तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आता है, अभी गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत पसंद है लेडी, और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम
0: जी। हम आपकी खुशी
1: बयां
0: को
1: नहीं कर सकती
0: जी, आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम। आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से।
0: सुशीला महेश्वरी भोपाल से?
1: जी
0: जी सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद हैं आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विविध भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म,
0: जी
1: ये वाला गाना सुनना है मुझे।
0: जी बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि, राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, शहर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ, एक तरह से गृहिणी
0: हूँ। तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादा।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, ये पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ मैं
0: जी
1: जिंदगी में
0: जी। तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेजे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि, राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं, राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे।
0: कहाँ से बात कर रही है वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ।
0: वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी?
1: सेवन।
0: सेवेंथ की।
1: हाँ।
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो
1: हाँ
0: सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती हैं?
1: हाँ,
0: क्या क्या शौक़ हैं आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है।
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो खो।
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना?
1: हाँ।
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा। तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही है विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, आज अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं?
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजया जी, मैं ये जानना
1: हाँ
0: चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका
1: हाँ
0: क्या
1: हाँ
0: अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया, जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए,
0: जी ये तो कमजोरी
1: और
0: हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
1: और
0: की।
1: इतना उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
0: क्योंकि आप
1: और
0: टीचर।
1: उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो
0: जी
1: अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई
0: जी
1: में। हाँ, नहीं
0: जी
1: ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं,
0: जी
1: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
1: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं,
0: जी
1: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं, और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं,
0: जी
1: इतना तोड़ डालते हैं कि ताउम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते।
0: जी
1: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं, लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है।
0: जी
1: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें।
0: जी यही हम जानना चाहते हैं, और हमारे सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा
1: हाँ
0: खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप
1: हाँ
0: को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप
1: हाँ
0: बताना चाह रही
1: तो
0: हैं ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
1: हाँ, नहीं ठीक है। तो मेरा मानना है हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना,
0: जी
1: लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख।
0: जी
1: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, और न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा।
0: जी यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए।
1: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा, और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं।
0: जी बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
1: ममता फिल्म का, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
0: तो चलिए सुनते
1: हाँ
0: हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से जी।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर
0: जी। शांति जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हैं जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ से घर ही रहते हैं, कुछ
0: जी।
1: नहीं। हाँ
0: हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आपको?
1: और मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता
1: हाँ
0: रहता है।
1: मैं, हाँ मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से और सुनती रहती, काम भी करती रहती
0: हाँ,
1: हूँ।
0: तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना
1: हाँ जी।
0: जी। तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए निकाह पिक्चर का
0: चलिए सुनते
1: जी।
0: हैं आपकी पसंद
1: हाँ
0: का ये गीत।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240002462, अंग्रेजी में 02240002462, 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें ताकि अन्य सखियों को

0: करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
2: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
2: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
3: प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं, प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं, वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा। वो उस अंधेरे की आदी थी, वो इसे जानती थी। वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली, अल्हड़, चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहाँ तक एक पगडंडी पहुँचती थी। यहाँ लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाज़ें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल, अस्पताल जैसे सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिला कर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही

0: किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यहीं लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करते। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती, किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थी। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहाँ मुझ पाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आँच होती।
1: नानी

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: वो नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर सिंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: घूमती रहती, फिकिरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाती। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो। गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजर कर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी

पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया। तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा। इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा। रात के नीरो सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक। प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागो थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहाँ धरती की नहीं, वो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाट बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे, दोनों अनमने से।

0: जा शक्ति। राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फल ही रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा हर औरत एक बुत ही तो है, महज मुस्कुराती हुई। क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

0: वो इस वक्त आकाश की याद में है, बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरसते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में, हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा तो चंदा के बिना आकाश कैसा? वे प्रेम में थे या उनके साथ पूरी प्रकृति ही प्रेम में थी?
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
2: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में, वो सोचने लगता है। स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थी। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब, कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है। कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझ कर थोड़े ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है। प्रेम निस्सीम है, निस्सीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है। उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है, उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है। अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती थीं। उनके पास बातों का ख़जाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता। उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।
3: ये रातें, ये मौसम, नदी का।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
3: नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
2: आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना, ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वहीं ठहर जाता। उसकी आवाज़ में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहाँ से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहाँ आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतज़ार करती रही। इंतज़ार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यही वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहाँ इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी एक ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वहीं दोनों लहूलुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं? वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: कोई माँ अपनी बेटी को ये किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी, वहीं से जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान सब तरफ देखा, ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई, पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता, उसमें सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी, जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता। दूसरी बात हुई, उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहाँ नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहाँ और भी अप्सराएं थीं, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी, एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रहीं, फिर कहानी में लौट आईं, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हूँ। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफ़ेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी, उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय ख़त्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उग आता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
3: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
4: छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। तेरी यादों की डोर से बंधा मेरा मन न जाने कितने सपने बुनता रहता है। कभी तेरी एक मुस्कान इन धागों को और मजबूत कर देती है, तो कभी तेरा इंतजार इन्हें और भी अनमोल बना देता है। नजर तो नहीं आते ये प्यार के धागे, मगर हर धड़कन में इनकी छुअन महसूस होती है। शायद इसी बंधन का नाम मोहब्बत है, जो दूरियों में भी साथ निभाती है।

रोज एक ही ख्वाब मेरी आंखों में चला आता है। उस ख्वाब में तुम होते हो और तुम्हारे साथ कुछ अधूरी सी प्यारी सी बातें होती हैं। कभी तुम मुस्कुराकर पास आ जाते हो तो कभी बिना कुछ कहे ही दिल की बात कह जाते हो। सुबह आंख खुलती है तो ख्वाब टूट जाता है, लेकिन तुम्हारी वही मुस्कान मन में ठहर जाती है। शायद इसी का नाम प्यार है, जब हकीकत से पहले कोई अपने ख्वाबों में बसने लगे।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

मैंने आज दिल से तुझे अपना माना है, तेरी हर सांस को ही अपना जाना है। तू भी मेरी धड़कनों का हिस्सा बन जा, मेरे हर ख्वाब का सच्चा किस्सा बन जा। ना मैं तुझसे दूर जाऊं, ना तू मुझसे कभी, ये साथ हमारा टूटे न चाहे आए कैसी भी घड़ी। हम दोनों का ये रिश्ता बस यूं ही रहे, हर जन्म में तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छायागीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुझे देखकर मन में एक अजीब सा अपनापन उतर आता है, जैसे तेरी हर खामोशी भी मुझसे कुछ कह जाती हो। तू सावन है तो मैं किसी सूखी नदी सी हूँ, तेरे आने से ही जैसे मैं पूरी हो जाती हूँ। तेरी हंसी में मुझे अपना बचपन दिखता है, तेरी आंखों में मेरा हर सपना सजता है। और सच कहूँ तो तुझे देखते ही लगता है कि मैं तुझे युगों युगों से जानती हूँ।

0: रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

मैं उस बात से अनजान हूँ जिसने मेरी रातों की नींद चुपके से ले ली। अब हर रात लंबी लगती है, जैसे समय भी मुझसे रूठ गया हो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, पर वजह कोई नहीं बता पाता। खामोशी भी अब कुछ कहती सी लगती है, पर मैं समझ नहीं पाती। बस इतना एहसास है कि कुछ तो है जो मुझे अंदर ही अंदर जगा रहा है, और मैं अब उस नए एहसास को और करीब से जानना चाहती हूँ।

दो नैन है उसके, पर उनमें मेरी ही एक कहानी बसी है। कुछ उसके होठों ने कभी कहा नहीं, पर मैं उसे हर बार आंखों में पढ़ लेती हूँ। कुछ बातें वो छुपा लेता है और कुछ मैं भी मुस्कुराकर अनसुना कर देती हूँ। लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हर एहसास मुझे साफ साफ समझ आता है, जैसे कोई अधूरी किताब हो जिसे हम दोनों मिलकर जी रहे हो, और मैं हर बार उसके नैनों में खुद को उसकी मोहब्बत बनकर देख लेती हूँ।

राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पण।

0: पित HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक शनिवार शाम 7 बजे सुनिए विशेष जयमाला, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज़।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, शुभ संध्या। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रावण और फिल्म का नाम है संग्राम।

राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान

0: को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: लीजिए सुनिए अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं बप्पी लहरी और फिल्म का नाम है नमक हलाल।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना।

राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए।

0: हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम का अगला गीत है आपके लिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं विजुषा और फिल्म का नाम है मोहरा।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन।
3: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
5: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
4: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
6: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश।

साथियों, ये विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही लम्हों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जाँच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सुदर्शन फाखिर का लिखा गीत है, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत है चन्नी सिंह का, फिल्म का नाम है यलगार।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुना जाए अगला नगमा अमित कुमार और साधना सरगम की आवाजों में। गीतकार हैं अनवर सागर, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है किशन कन्हैया।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: गीतकार गौहर कानपुरी का लिखा गीत सुनिए, जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है सावन को आने दो।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति। राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की, गीत है समीर का, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है अंदाज़।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है निगाहें।

0: साथियों, कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पचपदरा में देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी, श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। और प्रदेश में मॉनसून ने बढ़ाई रफ्तार, आगामी 1 हफ्ते तक सक्रिय रहने की संभावना।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बालोतरा के पचपदरा में देश का पहला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा से 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इनमें रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री कल प्रदेश को जिन परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पचपदरा में विकसित रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर है, जो सरहदी जिलों में विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेगी। यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। वे जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य देश में हवाई संपर्क को और बेहतर बनाना है। इसे विस्तृत और सतत संपर्क सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। इससे स्वदेशी विमानन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और सरकार की उड़े देश का आम नागरिक लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं के साथ ही जोधपुर रिंग रोड द्वितीय खंड पर 4 लेन निर्माण का भी उद्घाटन करेंगे। वे 1000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के कल प्रस्तावित राजस्थान दौरे को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने आज जोधपुर और बालोतरा का दौरा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कल होने वाले समारोह की तैयारियों के जायजे के लिए बालोतरा पहुंच रहे हैं। इससे पहले वे जोधपुर पहुंचे। वहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान के विकास को नए आयाम मिलेंगे।
2: इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए और राजस्थान में कहीं लेकिन देश का बहुत बड़ा काम ये होने वाला है। मैं आपको यही कहूंगा कि उसके साथ साथ कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं।
0: गौरतलब है कि पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री पहले 21 अप्रैल को करने वाले थे, लेकिन उद्घाटन के एक दिन पहले रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लगने की वजह से कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार HPCL रिफाइनरी से सालाना 9 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाना है। यहां के तेल को भारत सहित दुनिया भर के 40 देशों में निर्यात भी किया जाएगा। रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रोजोन विकसित किया गया है। इससे उद्यमी सीधे रिफाइनरी से कच्चा माल प्राप्त कर सकेंगे। ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी देश के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये भारत की अद्वितीय इंजीनियरिंग का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। रिफाइनरी से 1,35,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 सालों में देश के साथ जोधपुर ने भी आधारभूत प्रगति की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के हाथों कल होने वाले जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल के लोकार्पण को लेकर कहा कि इससे समूचे मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी और क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई मिलेगी।
3: अभी वर्तमान में हमारे एयरपोर्ट की जितनी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे लगभग 10 गुना हमारा व्यापार हो जाएगा। उद्योग जोधपुर की बढ़ती हुई आवश्यकता है, जोधपुर के उद्योग धंधे, जोधपुर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों, जोधपुर में बढ़ने वाली नई आर्थिक संभावनाओं, इन सब के दृष्टिकोण से ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा।

0: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू की है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि नई सुविधा शुरू होने के 2 दिनों के अंदर ही 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना ईमेल पता अपडेट कर लिया है। मंत्रालय ने कहा कि आधार को ईमेल से जोड़ने पर रियल टाइम ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ती है और सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है, क्योंकि इससे आधार नंबर रखने वाले लोग ये जान पाते हैं कि उनके आधार का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाबा अमरनाथ की सालाना यात्रा आज से शुरू हो गई है। पहला जत्था आज सुबह पहलगांव और बालटाल मार्गों से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों ही मार्गों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अपनी तय तिथि की बारी पर ही यात्रा में शामिल हो। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमरनाथ श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करके और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायकों से लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने और क्षेत्र के साथ राज्य की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने का आह्वान किया है। लोकसभा अध्यक्ष आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के 2 दिन के आमुखीकरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वे विधायी बहसों के साथ उनके समाधान पर भी बात करें। उन्होंने कहा कि आज का युग डिजिटल तकनीक का युग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विधायी संस्थाओं में बदलाव ला रहे हैं।
1: ये समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है और AI टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी।
0: राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर दी गई छूट 10 जुलाई तक बढ़ा दी है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर स्थानांतरण प्रतिबंध की छूट को 5 जुलाई से 5 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये छूट दी गई है। प्रदेश में मॉनसून ने दक्षिणी पूर्वी जिलों से आगे बढ़ते हुए उत्तरी इलाकों को भी भिगो दिया है। मौसम विभाग के अनुसार करीब हफ्ते भर की देरी से आए मॉनसूनी बादल बीते 24 घंटों में जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, झुंझुनू और हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में जमकर बरसे। इस दौरान सर्वाधिक 84 मिलीमीटर बारिश जयपुर के सांभर में दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में मॉनसून की उत्तरी रेखा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू जिलों से होकर गुजर रही है। इसके आगामी 3-4 दिनों में राज्य के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। श्री शर्मा ने बताया कि आगामी 1 हफ्ते तक मॉनसून की गतिविधियां चरम पर रहने की संभावना है।
2: दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले 1 सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान कहीं पे भारी और कहीं पे अति भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग और आसपास के लगने वाले जिलों में अगले 5-7 दिनों के लिए हेवी और कहीं पे अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जयपुर संभाग, भरतपुर, इसके अलावा अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों के लिए भी अगले 5-7 दिनों के दौरान ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहने और शेष इलाकों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से कंडीशंस अवेलेबल बनी हुई है।

0: दौरान कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड्स, आकाशीय बिजली के साथ कहीं पे मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है।
1: केंद्रीय शुष्क क्षेत्र और अनुसंधान संस्थान काजरी ने बीते एक महीने में राजस्थान, गुजरात और लद्दाख के 10,000 से अधिक किसानों को वैज्ञानिक और प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया है। कृषि मंत्रालय के खेत बचाओ अभियान के तहत काजरी ने 186 कार्यक्रम आयोजित कर समन्वित उर्वरकों, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और कीट प्रबंधन पर सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों से साझा की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पचपदरा में देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी, श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। और प्रदेश में मॉनसून ने बढ़ाई रफ्तार, आगामी 1 हफ्ते तक सक्रिय रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख जितेंद्र शर्मा ने तैयार किया है। श्रीगंगानगर जिले में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण का शुभारंभ हुआ। चूनावड़ में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने भाग लिया। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य करवाने के साथ साथ ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के निर्माण कार्य करवाए जाएंगे, वहीं ग्रामीणों को 125 दिन का रोजगार मिल सकेगा। कार्यक्रम में लोगों को योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिला प्रशासन के अनुसार ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार और दलालों की भूमिका पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जिला परिवहन कार्यालय में इनवर्ड प्रणाली बंद कर दी गई है। अब वाहन सारथी पोर्टल से जुड़ी अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। आमजन खुद या ई मित्र केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। जिले में जल संरक्षण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र पद्मपुर में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों और कम पानी में अधिक उत्पादन की आधुनिक विधियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर औषधि नियंत्रण विभाग ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कर तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा बड़ी संख्या में चालान भी बनवाए गए। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत काम शुरू किए जा रहे हैं। योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जिला परिषद के अनुसार इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार और विकास के नए अवसर उपलब्ध होंगे। जिले के युवा क्रिकेट खिलाड़ी मानव सुथार ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में पदार्पण कर जिले का नाम रोशन किया है। अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट हासिल किए और उपयोगी रन भी बनाए। उनकी उपलब्धि पर जिले में खुशी का माहौल रहा और उनके स्वागत के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कभी कभी घर घर चिट्ठियां, मनी ऑर्डर और पार्सल पहुंचाने तक सीमित माने जाने वाले डाक विभाग ने अब रोजगार और स्वरोजगार का नया जरिया शुरू किया है। इसके तहत श्रीगंगानगर मंडल की ओर से फ्रेंचाइजी योजना 2.0 युवाओं, महिलाओं, छोटे व्यापारियों और बेरोजगारों के लिए कमाई का नया अवसर बनकर उभर रही है। इस योजना के तहत आम नागरिक डाक विभाग के साथ साझेदारी कर अपने क्षेत्र में डाक सेवाओं का संचालन करते हुए नियमित आय अर्जित कर सकेंगे। श्रीगंगानगर के डाक अधीक्षक अजय चुघ ने बताया कि फ्रेंचाइजी योजना 2.0 को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। युवाओं को स्वरोजगार का मंच भी उपलब्ध होगा और डाक विभाग रोजगार की नई उम्मीद भी घर घर तक पहुंचा सकेगा। बठिंडा श्रीगंगानगर रेलखंड पर विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद अब इस ट्रैक पर इलेक्ट्रिक इंजन से गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया है। पहली बार इस रूट से इलेक्ट्रिक इंजन के साथ गाड़ी संचालन शुरू होने पर यात्रियों में

0: प्रसन्नता छा गई। इस ट्रेन का श्रीगंगानगर पहुंचने पर अधिकारियों ने स्वागत किया। इलेक्ट्रिक इंजन से गाड़ी चलने के बाद श्रीगंगानगर से दिल्ली के बीच करीब 1 से 1.5 घंटे के समय की बचत होगी, क्योंकि इससे बठिंडा में पावर बदलने का झंझट खत्म होगा, स्पीड भी बढ़ेगी। लंबे समय से यात्रियों की मांग और लगातार बढ़ते रेल यातायात को देखते हुए रेलवे ने श्रीगंगानगर के लिए एक बड़ी सौगात दी है। इसके तहत अब तक स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही काचीगुड़ा श्रीगंगानगर काचीगुड़ा रेल सेवा को नियमित साप्ताहिक एक्सप्रेस का दर्जा दिया गया है। इससे राज्य के सीमावर्ती इस जिले का दक्षिण भारत से रेल संपर्क और अधिक मजबूत होगा। इस निर्णय से श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सूरतगढ़ क्षेत्र के यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। दक्षिण भारत में शिक्षा, रोजगार, व्यापार और चिकित्सा कार्यों के लिए जाने वाले यात्रियों को अब अस्थायी व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम। विकास री 1,06,000 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावा रो उद्घाटन करण सागे नवी परियोजनावा रा काम री शुरुआत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राजस्थान रिफाइनरियों प्रदेश रो औद्योगिक विकास और तेज फैला। अमरनाथ यात्रा शुरू भी प्रधानमंत्री यात्रुआओं 5 संकल्प लेवन रियरच की। और प्रदेश में चौमासा री बिरखा तेज भी आवता 1 हफ्ता ताई चोखो में बरसबारा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल बालोतरा जिला रा पचपदरा माए देश रा पहला ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ने जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम है। वे बालोतराओं विकास री 1,06,000 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावा रा उद्घाटन करण सागे नवी परियोजनावा रा कामा री शुरुआत करेला। माणा खबर नवीस बतायो के आमाय रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरा माय आवण जावण रा सुविधाओं जुड़ी न्यारी न्यारी परियोजनावा शामिल है।
2: प्रधानमंत्री कल प्रदेश को जिन परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पचपदरा में विकसित रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर है, जो सरहदी जिलों में विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेगी। यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: इनु पहले प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल भवन रो उद्घाटन करेला। 480 करोड़ रुपए रा खर्चों बनाई जो नुओ टर्मिनल भवन सालाना 20 लाख मुसाफिरां री आवाजाही ने ध्यान रखता था का डिजाइन करी चियो है। श्री मोदी जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना री शुरुआत करेला। ई योजना रो मकसद देश में हवाई जुड़ाव ने और बेहतर बनावनो है। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ बीच रेलां री पटरियां दोवड़ी बनावन री परियोजना सागे जोधपुर रिंग रोड रा दूजा हिस्सा माथे 4 लेन री सड़क बनावन रा काम री शुरुआत करेला। वह 1,000 मेगावाट बोतारी बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजनाएं जनता ने सौंपेला। प्रधानमंत्री रा राज्य रा काल प्रस्तावित दौरा न ध्यान रखता था का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो पचपदरा रिफाइनरी रो दौरो कैरर काल फेवन वाला जलसारी तैयारियां रो जायजो लेवन रो कार्यक्रम है। इनु पहले जोधपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का वह कहो के पचपदरा माए तेल साफ करण रा कारखानाओं प्रदेश रो विकास और तेज फैला।
3: इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ ड्राइवर और राजस्थान में तो ही लेकिन देश का बहुत बड़ा काम ये होने वाला है। मैं आपको यही कहूंगा कि उसके साथ साथ कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा समेत न्यारा न्यारा आला अहलकार आज जोधपुर और बालोतरा रो दौरो कीनो। ध्यानजोग है कि प्रधानमंत्री पहली 21 अप्रैल 2026 ने पचपदरा माय एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी रो उद्घाटन करन वाला है, पर उद्घाटन रा एक दिन पहली रिफाइनरी रा एक हिस्सा माय लाई लाग जावन रा कारण कार्यक्रम टाल दियो चियो हो। करीब 80,000 करोड़ रुपया रा खर्च उमनाई जिया तेल साफ करन रा ई कारखाना माए सालाना 9 मीट्रिक टन कच्चो तेल साफ करियो चावेला। ओ तेल देश माए पूर्ति सागे दुनिया रा 40 देशा माए बेचो चावेला। ई कारखाना माए बनवा वाला दूजा छोटा मोटा उत्पादना माथे आधारित सहायक उद्योग लगावन सारू राजस्थान पेट्रो जोन विकसित करी चियो है। इनु कारोबारी सीधा रिफाइनरियों कच्चो माल ले सकेला। तेल साफ करन रा इन कारखानाओं 1,35,000 लोगों ने सीधा या परोक्ष रूप काम धंधो मिलेला। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए लाडला 12 साल माए देश सागे जोधपुर माई बुनियादी बरकत हुई है। वह श्री मोदी रा हाथों काल जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल न जनता ने सौंपण रा कार्यक्रम बाबत कहो क इनो पूरा मारवाड़ और राज्य रा आतुणी हलकारो हवाई संपर्क बधेला और हलकारा विकास ने नुवी ऊंचाई मिलेला।
4: अभी वर्तमान में हमारे एयरपोर्ट की जितनी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे लगभग 10 गुना हमारा विस्तार हो जाएगा। जोधपुर की बढ़ती हुई आवश्यकता है, जोधपुर के उद्योग धंधे, जोधपुर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों, जोधपुर में बढ़ने वाली नई आर्थिक संभावनाओं, इन सबके दृष्टिकोण से ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।
1: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार ऐप के जरिए आधार नंबर सागे मुफ्त ईमेल अपडेट रो सुबितो सरू किन्नो है। वो सुबितो 1 जुलाई 6 महीना सारू मुहैया कराई चियो है। इलेक्ट्रॉनिक सर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय रे मुजब नुओ सुबितो सरू भेवन रा 2 दिन में आई 2,00,000 लोग ईमेल पतो अपडेट करती नो है। मंत्रालय रे मुजब आधार माय ईमेल जोड़ती बगत संबंधित ईमेल माथे जानकारी मिले है। इनु साफ कोई सागे हिफाजत रो एक और लेवल मिले है। संबंधित आधार नंबर वाला मारा आधार रो जी काम माय इस्तेमाल करियो चारियो है मारी ठा कर सके है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। ई साल री अमरनाथ यात्रा आज शुरू होगी। पहलो जत्थो आज समारे पहलगांव और बालटाल रा गेलाऊ पवित्र गुफा सारू रवाना भियो। जात्रुआ रा सुबिता सारू दोनों गेला माथे जरूरी व्यवस्थावां करी ची है। सरकार जात्रुआ ने सुप्रीम कोर्ट रा हुकम रे मुजब आप अपनी तय तिथि माथे ही सफर शुरू करन री राय दीनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरनाथ री यात्रा सारू जावण वाला ने शुभकामनावां दीनी है। जात्रुआं सारू लिख्योड़ा एक कागद माए प्रधानमंत्री हर साल वेवण वाली अमरनाथ यात्रा ने देश री आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एका माए एक शाश्वत अध्याय बताई। प्रधानमंत्री जात्रुआओं अमरनाथ यात्रा रे दौरान साफ सफाई राखण, हिफाजती और प्रशासनिक दिशा निर्देशों की पूरी पालना करण, यात्रा खर्च रो कम 10% वोकल फॉर लोकल पहल रा तहत स्थानीय सामान री खरीदी माथे खर्च कर स्थानीय माली व्यवस्था ने बढ़ावो देवण, एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने बढ़ावो देवण सारू राखी रे मौके भाई बहन ने एक पौधो उपहार रा तौरों देवण, ईमानदारियों कर्तव्यों की पालना कर और विकसित भारत बनावण में योगदान देर राष्ट्र प्रथम री भावना ने आगे बढ़ावण री अरज कीनी। प्रधानमंत्री भरोसो जतायो कि अमरनाथ यात्रा आस्था, सांस्कृतिक एका और सेवारा मूल्या ने मजबूत करती रहवेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधायकाओं लोकतांत्रिक परंपरावां ने मजबूत करण और हल्का सागे राज्यरी उम्मीदारी नुमाइंदगी करण बाबत कहो है। वे आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा रा नुआ चुनी ज्या सदस्यों रा 2 दिन रा आमुखीकरण कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री बिरला सदस्यों विधायी बहस सागे वारा समाधान माथे विचार करण सारू कहो। लोकसभा अध्यक्ष कहो कि मौजूदा डिजिटल तकनीक रा दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विधायी संस्थावां में आई बदलाव ला रहा है।
5: ये समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है और एआई टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी।
1: प्रदेश में काल मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव रा तहत न्यारी न्यारी सरकारी सेवाओं में सारू चुनी ज्या नौजवानों ने नौकरी लागण रा कागजात सौंप्या चावेला। जिला मुख्यालय माथे रख्या जावण वाला कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री और महकमा रा अहलकार नुआ कर्मचारियों ने नौकरी लागण रा कागज देवेला। इस दौरान बालोतरा में भेवण वाला प्रधानमंत्री रा कार्यक्रम रोई सीधो प्रसारण कर्यो चावेला। प्रदेश रा उत्तराद हल्का माए चौमासारी बिरखा शुरू है की है। मौसम विभाग रे मुजब लाडला 24 घंटा माए जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, झुंझुनू और हड़ौती हल्का रा जिला माए जोरदार में बरसियो। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो कि इन दौरान सबों 32-84 मिलीमीटर बारिश जयपुर जिला रा सांभर माए दर्ज करी ची। श्री शर्मा बतायो कि आवता एक हफ्ता ताई चौमासारी बिरखा चालती रहवण रा आसार है।
6: दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान कहीं पे भारी और कहीं पे अति भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग और आसपास के लगने वाले जिलों में अगले 5-7 दिनों के लिए हेवी और कहीं पे अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जयपुर संभाग, भरतपुर, इसके अलावा अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों के लिए भी अगले 5-7 दिनों के दौरान ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहने और शेष इलाकों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से कंडीशंस अवेलेबल बनी हुई है। इस दौरान कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड्स, आकाशीय बिजली के साथ कहीं पर मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है।
1: राज्य सरकार कर्मचारियों और अहलकारों का तबादला माथा छूट री मियाद 10 जुलाई तक बढ़ा देनी है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग इन बारा माए हुक्म जारी करती ना है। आखिर माए खास समाचार एकर फेरो सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम। विकास री 1,06,000 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रो उद्घाटन करण सागे नूवी परियोजनावां रा काम री शुरुआत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राजस्थान रिफाइनरियों प्रदेश रो औद्योगिक विकास और तेज भेला। अमरनाथ यात्रा शुरू भी प्रधानमंत्री जातरुआं 5 संकल्प लेवन री अरज कीनी। और प्रदेश में चौमासारी बिरखा तेज भी आवता एक हफ्ता ताई चोखो में बरस बारा आसार। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल समारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
7: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
8: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
7: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
8: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है उपकार।

0: लीजिए सुनिए, भारतीय सेना गीत गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये डटे हुए देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, इससे पहले आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर। दिल एक मंदिर, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

नील कमल। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल हैं साहिर लुधियानवी के, तर्ज है रवि की।

रांझा। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोलों को सुरों में ढाला है मदन मोहन ने।

राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी

0: पाकिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: एक नई खुशी।
1: JDL आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए सुनिए अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, तर्ज है खयाम की, फिल्म का नाम है चंबल की कसम।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजय के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
3: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा। कल का

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
3: अनमोल यादें।
4: नमस्कार श्रोताओं, आज से ये जो श्रृंखला शुरू हो रही है अनमोल यादें, इस कार्यक्रम में ऐसे अनमोल गीतों से परिचय करवाएंगे आपका जो हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास के छुपे खजाने का एक अनमोल हिस्सा रहे हैं। दोस्तों, हर गाना एक इंसान की तरह होता है जो अपना नसीब लेकर जन्म लेता है। कुछ गीत तूफान मचा देते हैं तो कुछ पॉपुलर होते हैं सिर्फ थोड़े समय के लिए और फिर उन्हें लोग भूल जाते हैं। और ऐसे भी कई नगमे होते हैं जो बेहद सुंदर होकर भी लोकप्रियता की ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, ऊपरी स्तर तक नहीं पहुंच पाते। तो आज इस श्रेणी में हम आपका परिचय ऐसे ही 3 गीतों से करवा रहे हैं। इस पहले भाग में कार्यक्रम के श्रृंखला के हर भाग में हमारे साथ होंगे जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: शुक्रिया जैन जी, और सारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहा जाता है कि किसी भी नए कार्यक्रम का आरंभ ईश्वर को याद करके किया जाना चाहिए।
4: जी बिल्कुल।
5: तो आइए एक भक्ति गीत से हम शुरू करते हैं, जिसकी रचना बहुत ही कमाल है। पहले आप गीत सुनिए और फिर मैं इसके बारे में बात।

0: राजीव जी, 1966 की ये फिल्म है छोटा भाई, जिस फिल्म से ये रचना थी लता जी की आवाज में भगवान ने अपने जैसा, तो ये जो भजन है आनंद बख्शी का लिखा हुआ और इसके संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे, क्या खासियत इसकी रही है?
1: इसमें जो शब्द है कि भगवान ने अपने जैसे हर इंसान को बनाया, तो भगवान के अंदर तो कोई पाप नहीं है, तो ये पाप कहाँ से आया, हम झूठ कहाँ से बोलना सीखे, ये सब चीजें जो बहुत ही मतलब अलग ही रचना, अलग ही लेवल पे बख्शी साहब ने ये गीत लिखा है। और इसके लिए मैं हमेशा मानता हूँ कि बख्शी साहब की जो दूरदृष्टि थी ऐसी चीजों में वो कमाल थी, और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इसके बारे में सोचकर इसे एक फिल्मी गीत भी बना सकेंगे कि जो धुन है मेलोडी से भरी है, और इसके लिए मुझे ये गाना बहुत ही पसंद है। बल्कि तो मैं तो ये कहूंगा कि ये गाना सुन के हमेशा मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैं और एक गाना सुनाना चाहता हूँ ऐसी फिल्म का जिसके सारे लगभग गाने बेहद पॉपुलर हुए। आप जानते होंगे कौन है जो सपनों में आया, कहाँ चल दिए,
0: क्या बात,
1: फिर उनसे मिली नजर, और फिर मेरे तुम्हारे बीच में, अब
0: झुक गया आसमान, फिल्म के गीतों का आप जिक्र
1: जी
0: कर रहे हैं।
1: हाँ, झुक गया आसमान में एक ऐसा गाना था जो बहुत ही खूबसूरत होकर भी किसी वजह से इन गानों के टक्कर में नहीं आ पाया। शैलेंद्र जी ने हमेशा की तरह एक बहुत ही खूबसूरत लिखा है, और वो एक बहुत ही वेस्टर्न ओरिएंटेड ट्यून जो बनाई थी शंकर जयकिशन साहब ने, और उसके बोल है, सच्चा है घर प्यार तेरा सनम।

0: अब किस गीत बारी है?
1: चलिए, मुझे लगता है माहौल तो सेट हो गया है
0: जी।
1: अब एक ऐसा सुरीला नगमा मैं पेश करने जा रहा हूँ जो इतना मधुर है कि अगर आप उस वक्त चाय पी रहे होंगे तो उसमें शक्कर डालने की भी जरूरत नहीं होगी।
0: अच्छा,
1: 1977 में एक फिल्म आई थी जो चली नहीं, उस फिल्म का नाम था दरिंदा।
0: हाँ।
1: उस फिल्म में इंदिवर साहब ने जो अपनी ही खास शैली में लिखा हुआ ये गाना है
0: जी,
1: वो काफी रोमांस भरा है लेकिन से भी भरा है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: और ये गीत जो है वो कल्याण जी आनंद जी ने बड़ी ही खूबसूरती से इसकी धुन बनाई है और ये गा रहे हैं मुकेश जी, और मुकेश जी की आवाज
0: हाँ
1: क्या कहने।
0: तो चलिए सुनते हैं 1977 की फिल्म दरिंदा का ये गाना।

0: आखिर में तुम्हें मेरा ही होना होगा। ये इंदिवर जी की एक खास शैली थी
1: जी,
0: कि इंटेंस रोमांस जो है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे
1: जी,
0: जीने के बहाने लाखों है, जीना तुझको आया ही नहीं, ऐसे गानों के लिखने वाले ये मास्टर थे। और कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई के साथ तो इनकी कॉम्बिनेशन हमेशा कमाल रहती थी
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आपसे विदा लेते हैं राजीव जी, अगली कड़ी में हम अपने श्रोताओं से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं, नमस्कार।
0: और तब तक अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।
2: अनमोल यादें, अनमोल यादें।

श्रोताओं, हवा महल में आज आप सुनेंगे पड़ोसी का कैमरा, ये प्रहसन। लेखक हिमांशु श्रीवास्तव, निर्देशक भगवान साहू।

0: मिठाई लाल जी, ये दोनों हाथों में रबड़ी कपटी, खूब रबड़ी खाओ भाई, मौसम सर्दी का आ गया, यही वक्त है सेहत बनाने का।
1: अरे रे मनीष शंकर, अरे हाँ, ये हैंडबैग आज क्यों इतना भारी?
0: कोई खास बात नहीं, एक कैमरा खरीदा है।
1: कैमरा?
0: हाँ,
1: यानी फोटो खींचने वाला कैमरा।
0: हाँ भाई, जमाने से सोच रहा था कि।
1: अरे दिखलाओ भाई, दिखलाओ जरा, कमाल कर दिया तुमने।
0: यहाँ राह में दिखाऊं यार?
1: अरे यार, आज इतवार है, कई दुकानें बंद है, चलो किसी दुकान।
0: अरे रे कल वल देख लेना, कैमरा है बस, कोई अचंभे का बच्चा तो है नहीं। अभी जाओ रबड़ी खाओ, कई कपटी हाथ से छूट पड़ी तो।
1: अच्छा भाई।
2: मुक्ता, ओ मुक्ता।
0: होशियारी से पकड़ो तो।
3: क्यों क्यों, क्या है बैग में और कहाँ रह गए इतने देर? रविवार को भी घर से बाहर, सर्दी गिरने लगी और समय भी।
0: कोई ज्यादा देर तो नहीं हुई, 7:00 यही कोई 48-49 मिनट।
3: अरे बैग तो थोड़ा भारी लगता है।
0: अरे क्या है इसमें? संभाल के मुक्ता।
3: क्या होगा, कोई अच्छी सी साड़ी या ब्लाउज पीस?
0: बस बैग मत खोलो और समझ जाओ कि इसमें क्या है, तो मान लूं कि हो लाल बुझक्का।
3: और जनाब मैं हार मान लूं तो मेरी कौन सी बेइज्जती हो जाएगी?
0: तो मान लो हार।
3: मानती हूँ।
0: इसमें कैमरा है मेरी जान।
3: सचमुच?
0: हाँ बिल्कुल, हाथ कंगन को आरसी क्या देख लो निकाल के।
3: अच्छा, अरे ओहो, ये तो बहुत अच्छा है। चलो अच्छा किया, तुम्हें बहुत दिनों से एक कैमरा लेने का शौक था।
0: देखो डार्लिंग, इसके लिए मैंने वो पैसे बटोर के रखे थे जिन्हें तुम मेरी जेब खर्च के लिए देती थी।
3: अच्छा,
0: खुश होना।
3: क्यों नहीं, मैं तो खुद सोचती थी कि किसी तरह तुम्हारा ये शौक पूरा हो जाए। अच्छा चलो खाना खा लो, रोटी ठंडी हुई जाती है।
0: अच्छा चलो।
4: घर में हो भाईजान?
0: ये तो बेखबर वाच रिपेयरिंग हाउस वाला है, क्यों मुक्ता?
3: हाँ, नजाकत हुसैन।
0: ये तो भयानक गप्पी है, चाय भी न पी सका। और अच्छा खैर, तुम उसे भी चाय पिला देना और रसोई की तैयारी।
3: अच्छा पहले दरवाजा तो खोल दो।
4: भाई बाबा क्या कहने हैं, मुबारकबाद देने आया हूँ।
0: अरे काहे की मुबारक नजाकत साहब,
4: आपके भी नखरे का जवाब नहीं भाईजान, रात अच्छा खासा नया कैमरा ले आए।
0: कैमरा? ओह कैमरा, आपसे किसने कहा?
4: अरे कहेगा क्या कोई दुश्मन, दुश्मन तो सुनकर बस चलेगा ही।
3: आखिर हम भी तो सुने सही।
4: हाय हाय, भाभी साहिबा के भी क्या कहने हैं, कुर्बान जाऊं। अरे ये जो अपना पड़ोसी है ना, कंपाउंडर मिठाई लाल, उसी ने बतलाया। खैर कोई बात नहीं, मणिशंकर भाई।
0: हाँ।
4: आज सूरज डूबने से पहले मेरे दोनों बच्चों की तस्वीर।
0: बच्चों की तस्वीर?
4: हाँ हाँ हाँ, दुकान में अपनी सीट के सामने फ्रेम कराकर लगा दूंगा।
0: अरे मुक्ता, इन्हें चाय पिलाओ भाई। अच्छा भाई, दोनों बच्चों की तस्वीर तो खींच दूंगा, मगर फिल्म और धुलाई का खर्च।
4: बस बस बस बस, ये मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात यकीन करने को नहीं कि तुम मुझसे इनका खर्च लोगे। तो भाई रही बात पक्की? क्यों?
0: अच्छा रही पक्की।
4: अच्छा तो मैं चला।
3: अरे चाय तो।
0: अरे जाने दो, एक कप मैं पी लेता हूँ और एक कप तुम पी लो।
3: कौन?
5: मैं हूँ गुरु घंटाल।
3: अरे राम, ये तो अपने मकान मालिक हैं।
0: तो खोल दो दरवाजा और तुम भीतर चली जाओ।
3: अच्छा।
6: जय राम जी की मणिशंकर बाबू, कहिए क्या हाल चाल?
0: बस दुआ है आपकी, कहिए कैसे कृपा की?
6: अरे भाई सुना कि कैमरा लाए हैं आप।
0: जी हाँ, ले तो आया हूँ।
6: बस तो बच्चों का मन रख दीजिए, मेरी बेबी भी चाहती है।
0: क्या चाहती है?
6: बात यह है कि कल मेरी छोटी बच्ची अपनी गुड़िया का ब्याह पड़ोस की लड़की के गुड्डे से रचा रही है।
0: अच्छा अच्छा।
6: मत पूछिए, बहुत से लड़कों का हुजूम रहेगा।
0: हाँ।
6: करीब 8 रात में, आप उसी अवसर पर सिर्फ 15-20 फोटो।
0: मगर गुरु घंटाल जी, रात को फोटो लेने के लिए तो फ्लैश लाइट चाहिए, और वो तो मेरे पास है नहीं।
6: अजी साहब, तो कौन बड़ी जमा पूंजी लगती है, एक फ्लैश लाइट खरीद लीजिए, आपके और भी काम आ जाएंगी। तो रहा पक्का, कल रात 8, भूलना नहीं। अच्छा तो मैं चलूं।
3: क्या कह रहे थे, शायद फोटो लेने की बात?
0: मत पूछो, समझो कि मैं मर गया। अच्छा मुक्ता, एक बात तो बताओ, रखती हो कुछ अपने पास?
3: मतलब?
0: कुछ पैसे हैं, फ्लैश लाइट खरीदनी है।
3: थोड़े से पैसे रख छोड़े हैं, दे दूंगी।
0: अरे भाई मकान मालिक है, और हाँ रसराज को भी तो फोटो देना है, स्टूडियो में धुलने और प्रिंट करने को दे आया हूँ, पैसे ही नहीं है कि लाऊं, और रसराज है कि सुबह शाम तक अदा करता है।
3: अच्छा वो कवि महोदय, धुलाई और प्रिंट के पैसे क्यों नहीं मांग लेते तुम?
0: अरे भाई वो कवि है ना।
3: मगर मुझे उस रोज एक बात अच्छी नहीं लगी।
0: क्या?
3: वो मेरे साथ फोटो लिवाने को मचल गया।
0: हाँ।
3: और तुम भी तैयार हो गए, अपने दोस्तों को दिखाएगा और।
0: अरे राम राम राम राम, रसराज ऐसा नहीं कर सकता, कितना आदर करता है तुम्हारा।
3: कोई आया है,
0: देखो तो सही।
4: जय राम
7: जी की मनी शंकर भाई।
0: ओह जय राम जी की, जय राम जी की। कहिए मिठाई लाल जी, कैसे कैसे पधारे?
1: अरे भाई तुम फोटो खींचने का कैमरा क्या ले आए, मुझसे नाता ही तोड़ लिया। कवि जी की तस्वीर ली गई, मकान मालिक गुरु घंटाल जी की बेटी ने गुड़िया का विवाह रचाया तो उस अवसर की तस्वीरें ली गई, और क्या नाम है नजाकत हुसैन के बच्चों की तस्वीरें उतारी, और फिसड्डी पड़ा तो मैं।
0: क्या गजब हो गया, कहो भी तो।
1: अरे भाई मुझे क्या घर परिवार नहीं है, क्या मैं अरमानों की दुनिया से दूर हूँ, या कि तुम मेरे पड़ोसी
0: नहीं? नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा कौन कहता है भला।
1: तो फिर आज तुम दफ्तर से सूरज डूबने से पहले आ जाओ, मेरे बच्चे और बच्ची की तस्वीर खींच दो, बच्ची को राधा और बच्चे को कृष्ण का मेकअप कराऊंगा।
0: मगर बात यह है मिठाई लाल जी कि फिल्म धुलाई और प्रिंट का खर्चा।
1: जी हाँ जनाब, जैसे वे आपके बच्चे ही नहीं। छोड़ो ये चोचले, बस आज शाम याद रहे, सूरज डूबने से पहले मैं उन्हें तैयार रखूंगा।
3: हे भगवान, ये कौन पहुंचा?
4: दरवाजा खोलिए भाईजान।
0: आदाब अर्ज़ है नज़ाकत भाई।
4: भाई माफी चाहता हूँ गुस्ताखी के लिए।
0: क्यों, क्या हुआ? आज तो तेवर ही बदले हुए जनाब के।
4: भाई साफ इनकार कर जाते तो अच्छा था, बच्चों की तस्वीर क्या ली, सब कूड़ा कर दिया। खुदा की कसम चार रोज तस्वीर लगाई नहीं कि उनका प्रिंट ही उड़ने लगा। लोग कहते हैं पड़ोसी के साथ मुरव्वत करो, मिल तो गया नतीजा मुरव्वत का, आकर दुकान में ले लेना वो तस्वीरें। अच्छा मैं जा रहा हूँ।
3: ये तो अच्छा अंजाम मिला मुफ्त तस्वीर खींचने का।
0: खैर क्या करना है, तरह तरह के लोग हैं। अच्छा मुक्ता जरा वो मेरा बैग तो लाना, कल बंबई से तुम्हारी बड़ी जीजी का पत्र आया है, है तो वो मेरी केयर ऑफ, मगर लिखा है पर्सनल, निकाल के पढ़ लो। और हाँ एक मैगजीन भी रखी है, उसमें लाना तो जरा।
3: अभी लाती हूँ।
0: पढ़ लिया पत्र, सब ठीक ठाक तो है ना?
3: हाय ये तो गजब हो गया, जरा वो मैगजीन तो खोलना, पेज 19।
0: क्या बात हुई?
3: अरे रे रे रे रे, उस पत्रिका में कवि रसराज ने वो तस्वीर छपवा दी जो मेरे साथ ली थी उसने।
0: सच?
3: हाँ हाँ देखो तो सही।
0: ये तो रहा पेज 19 है, रसराज की कविता छपी है इसमें, मिलन वेला। ठीक वही फोटो, नीचे छपा है कवि जीवन संगनी के साथ।
3: और ये पत्र पढ़ो, जी जी क्या लिखती है।
0: प्रिय मुक्ता, तुमने जो गलत कदम उठाया उसके लिए हम लोग समाज और बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। भला मणिशंकर में क्या गुण था? मणिशंकर अगर तुम्हारे पास मेरा ये पत्र पहुंचा दे तो फौरन उत्तर दो कि क्या मामला है। मैंने पिताजी से भी इस बारे में सही खबर देने को कहा है, उन्हें तो बड़ा सदमा पहुंचा होगा। मैगजीन के प्रति भेज रही हूँ जिसमें तुम्हारे कवि पति के साथ तुम्हारी तस्वीर छपी है। अरे राम राम राम, इस रसराज ने तो बाहर डाला हमें। देखो तो सही कौन आया है मुक्ता।
4: अजी क्या हुआ उन तस्वीरों का मणिशंकर जी?
0: वो बात यह है गुरु घंटाल जी, वो बात यह है कि तस्वीरें तो 15-20 हैं और उनकी धुलाई और प्रिंट का खर्चा।
4: दिल में कालापन क्यों रखते हैं साहब? उस रोज तो फ्लश लाइट का रोना रोते रहे। मकान में जब आए थे तो कहा था भाई बनकर रहूंगा, और अब बच्चों के लिए 10-5 का भी मुंह देखने लगे।
0: जी हर महीने एडवांस किराया देता हूँ, इतना ताप क्यों सहूं?
4: तो मत सही है ताप, बड़े मातवर है तो मकान खाली कर दीजिए। जब मकान मेरे पास तो बहुत किरदार मिलेंगे। मकान किराए पर क्या दिया था, कोई पगड़ी नहीं ली थी। मुझे ऐसा जुबानी भाई नहीं चाहिए। कब करते हैं मकान खाली?
0: बस जितनी जल्दी होगा।
4: तो बस जल्दी करें, मैं टू लेट की प्लेट टांगने जा रहा हूँ। जय राम जी की,
0: जय राम जी की।
3: ओफो, तुम तो बुरे फंसे कैमरा लेकर। अच्छा मैंने तुम्हें रात बतलाया नहीं?
0: क्या
3: वो पड़ोसी है ना कंपाउंडर मिठाईलाल, हाँ। वो लाहना देने आए थे, फोटोग्राफी नहीं खाक जानते हैं। राधा भी तस्वीर में गोरी आ गई और कृष्ण भी गोरा आ गया। बेटी तो उनकी एक आंख से कानी है, कहने लगे ज्यों की त्यों तस्वीर उतार कर बच्ची का मजाक उड़ाया है।
0: हे भगवान, कहां से ये कैमरा खरीद लिया मैंने?
3: और अपने कवि मित्र रसराज से नहीं पूछोगे कि ये कांड क्यों किया?
0: उसकी याद मत दिलाओ मुक्ता, ऐसे नादान दोस्तों को मुंह नहीं लगाऊंगा कभी। अच्छा अभी चलता हूँ बाहर, एक मित्र के मकान का आधा हिस्सा खाली पड़ा है, तुम तब तक सामान संभालो, मैं चला।
3: और गुरु घंटाल जी तो?
8: मुक्ता भाभी माफ कर दो, इस कवि देवर को माफ कर दो, संपादक ने कविता के साथ छपने के लिए मेरी तस्वीर मांगी थी, मेरे पास अलग से अपनी कोई तस्वीर नहीं थी, मैंने तुम्हारे साथ वाली तस्वीर भेज दी और संपादक को यह बतलाना भूल गया कि महिला का चित्र बचाकर काट ले तब छापे।
3: मगर हद हो गई कवि जी, मेरी तो ऐसी की तैसी हो रही है।
8: जो भी हो माफ कर दो भाभी, मैं तो शर्म से दुबला होता जा रहा हूँ, गम में आज दाढ़ी बनाई तो क्रीम नहीं लगाई, देखो आंखों में सुरमा तक नहीं डाला।
3: बस बस बस अभी भाग जाओ, कहीं वो आ गए तो।
0: चलो मुक्ता ताना खड़ा है, सामान लगवाओ। कम वक्त कैमरे को भी बेच आया, उसके साथ जहां जाते के शोर होता पड़ोसी के पास कैमरा है।

अभी आप सुन रहे थे हिमांशु श्रीवास्तव का लिखा प्रहसन पड़ोसी का कैमरा। इसके निर्देशक थे भगवान साहू। आकाशवाणी पटना की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, आपको याद दिला दें कल के कुछ कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार रामलाल पर।

कल दोपहर 3 बजे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होगा मनचाहे गीत। दोपहर बाद 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए बॉम्बे टॉकीज में गीतकार सुधाकर शर्मा से की गई मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग। कल शाम 7 बजे विशेष जयमाला में सुनिए पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को। कल रात्रि 8 बजे हवा महल में आपको सुनवाएंगे सुनो कहानी में मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विश्वास का पहला भाग। कल रात 9:30 पर आज के फनकार, कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार भरत व्यास पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत और देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए सुबह व शाम 6 बजे, मध्यान्ह 12 बजे, सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 2:15 पर दोपहर समाचार और रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या सुनिए। तो ये थी जानकारी कल के कार्यक्रमों के बारे में।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
3: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
4: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
5: प्रत्येक शनिवार शाम 7 बजे सुनिए विशेष जयमाला। प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज़।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है तेजाब।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।

लीजिए सुनिए अगला गीत, कविता कृष्णामूर्ति, करसन सरगतिया और साथियों की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं महबूब, संगीतकार हैं इस्माइल दरबार। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा। कल का

0: एक नई खुशी। JDL आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजना जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल, कविता कृष्णामूर्ति, केके और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है नुसरत बद्र ने, तर्ज है इस्माइल दरबार की, फिल्म का नाम है देवदास।
3: Hey,

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: Prime Minister will also be visiting.
4: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
6: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
7: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए 2 संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं कैफी आज़मी, संगीतकार हैं मदन मोहन, फिल्म का नाम है हीर रांझा।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अगला गीत। नगमा निगार हैं कैफ भोपाली, संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद, फ़िल्म का नाम है पाकीज़ा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार हैं परवेज शमसी, धुन है सी रामचंद्र की, फिल्म का नाम है नौशेरवाने आदिल।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर।

कार्यक्रम का अगला गीत है महेंद्र कपूर की आवाज़ में, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, धुन है रवि की, फिल्म का नाम है हमराज़।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है लाल पत्थर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर,
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी

0: पेशो प्रोग्राम आज के फनकार।
1: ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने जानी राजकुमार पर।

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई, मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना, जो बनी थी 1971 में।
2: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है। वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो, जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे, न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफ़ी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी तीन फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ? तो
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा यह है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेह पूर शिखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर, वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ

राजकुमार एक रहमदिल मगर मुँह फट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे, जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहे।
0: तो सुनिए हर रोज रात 9:30 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: विविध भारती का जयपुर केंद्र है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे छाया गीत।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती। वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
2: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: दिल का खोना कभी आसान नहीं होता। उसकी धड़कनें बता देती हैं वो छिपा है कहाँ। हर लम्हा समंदर की लहरों की तरह उठती गिरती हैं, जैसे आवाज़ लगाती हैं, कभी देखो तो यहाँ। इन्हीं लहरों की रवानी में गूंज उठता है दिल को चुराता हुआ कोई मीठा नगमा।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति। राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

देखा तो मौसम।

कोई ये कैसे बताए कि चंद अल्फाजों से एक गुलशन किस तरह खिल उठता है, उम्मीदों का दरख्त कैसे झूम उठता है, किस तरह उस पर फूलों की तरह दुनिया के तमाम हसी रंग सज जाते हैं, और कैसे उसकी डालों पर बैठे ख्वाबों के पंछी सरगोशियां करते हैं, गुनगुनाते हैं।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: छायागीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
2: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
2: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
2: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

रात जब चांद अपनी ही धुन में कुछ बुझा बुझा सा हो, धुंधलाया आसमान शांत झील सा लगता हो, सितारे तैरने लगते हैं यूं जैसे बत्तखों के झुंड, और कभी कश्तियों का रूप धर लेते हैं। इन्हीं कश्तियों पर जब बैठने को मचलता है दिल, तो चांद की बेदिली खुद ब खुद मिट जाती है। भीनी भीनी चांदनी के संग वो छेड़ देता है कोई अफसाना दिलकश सा।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

हर रोज कुछ ऐसा ही होता है। दिन कुछ दिल फरेब नगमे कलम बंद करता है और फिर बड़े जतन से उन्हें वक्त के आंचल में संजो देता है। देर रात की छाया में हर रोज ये सुरीले गीत जाग जाते हैं। दिन की पेशानी पर रखते हैं मीठा सा बोसा और पलकों पर सुकून सजा जाते हैं।

0: छाया गीत में आज बस यहीं तक, दीजिए राजुल को इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: ढलती जाए।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

0: की। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा समाप्त होती है। कल सवेरे 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।